0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में A product by Aksa Cosmetics Pakistan
2: Finally अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
4: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
5: Super White!
6: Har din, har peher, zindagi ki leher. GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: ऐ बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ऐ डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेहमे आहिन चावरन जो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कन ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन संगरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

गवर्नर राज या एमरजेंसी जमहूरी मैंडेट ऐं आइनी हक़नि ते हमिलो हूंदो। दहशतगर्दीअ जो हल रुगो गवर्नर राज या एमरजेंसी न आहे। एमरजेंसी सूबे ऐं वफ़ाक लाइ नुक़सानकार साबित थींदी। केपीअ ते वधीक तजुर्बा न थियणु घुरिजनि। दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे ते इतफ़ाक़ आहे, रुगो तरीक़े ते इख़्तिलाफ़ आहे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर चयो आहे त ॻाल्हियुनि जी गुंजाइश मौजूदु आहे, मौक़ो मिलणु घुरिजे। केपीअ जे वॾे वज़ीर सोहेल आफ़रीदी जी सदारत हेठि पिशावर में पार्टी अॻवाननि जो आम इजलास, लांग मार्च समेत वफ़ाक़ी हुकूमत सां जारी शिकतान ते गौर कयो वियो।

केपीअ में एमरजेंसी आखिरी ऑप्शन आहे, असांजी का बि ज़ाती अना न आहे, असांजी अना रुगो पाकिस्तान ऐं मुल्क जो मफ़ाद आहे। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त क़ौमी पॉलिसीअ ख़िलाफ़ ॻाल्हियूं कई पई वञनि, माण्हुनि खे भड़काए पियो वञे, लॻे थो को ऑप्शन न आहे, बचियो आइनी त आइनी तौरु आख़िरी ऑप्शन इस्तेमालु कयो पियो वञे। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम चयो आहे त केपी वासियुनि खे दहशतगर्दनि हवाले कयो वियो आहे, केपी वासियुनि खे दहशतगर्द हवाले थियणु न ॾिनो वेंदो।

जी रिपोर्ट ते मुतमैन थियण जी सूरत में या बिन्ही ऐवाननि जी धार धार ठहराइण जी सूरत में पधिराई जारी करे सघे थो। सदर सूबाई हुकूमत जा कुझु या सभई फर्ज़ पाण संभाले सघे थो या वरी गवर्नर खे उहे फर्ज़ अदा करण जी हिदायत करे सघे थो। आईन जे आर्टिकल 232 मूजिबि वफ़ाक ऐं सूबे जे इख़्तियारनि जे हवाले सां आईन में मौजूदु एमरजेंसी जे तरीक़ेकार मूजिबि सूबाई संभल जा इख़्तियार पार्लियामेंट ज़रिए इस्तेमाल करे सघजनि था। पधिराईअ जे ॿिनि महीननि अंदरि मंज़ूरी ज़रूरी आहे। एमरजेंसीअ दौरान पार्लियामेंट खे सूबे बाबति कानून साज़ीअ जो बि इख़्तियार हासिलु हूंदो।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लाम आबाद में नेशनल आईटी पार्क जो इफ्तिताह करे छो तकरीब के खिताब कंदे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चयो त आईटी पार्क नौजवानन लाए तरक्की जा नवा दग खोलींदो। नेशनल आईटी पार्क मुल्क जे तरक्की खुशहाली लाए बे आम साबित थींदो। आईटी पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरियंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है सुपर

चाहत ही फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत ही फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सी दिल, सीर सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार सिंध की आवाज। हम ये कैसे हैं आप भाई हमसे जी, जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिपटॉप सर्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं पूरी पूरी एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स। सुपर वाई के प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स, जिनकी जानिब से आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है। तो जी आज भी हम आपको बताएंगे और क्या क्या बताएंगे, वो सब कुछ बताएंगे कि जिससे आपकी खूबसूरती में इजाफा हो सकता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम वक्त की बात करते हैं। वक्त हुआ जाता है 11:17 जगह पाकिस्तान का मियादी वक्त है, तमाम तो लोगों की गाड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जगह इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक में है, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बेटर लगता है वो अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीच को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बस इसलिए खुदा खैरियत मौजूद है और तवक्कुल खुदा।

यहाँ सालगिरह हमको कहेंगे मैंने मैंने यहाँ प्रेजेंस ऑफ द डे आपको गुड न्यूज के अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस. इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शोबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दुनिया और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरी बरसारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगे ले जी आया नू सब सुल्ला बाजार शाह निहाल एंड Welcome into Zindagi Guzar Hai, sponsored by Super White Products by Aksa Cosmetics. तो सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स जो कि आपकी खूबसूरती में कर रहे हैं बे इंतहा इजाफा. तो आज भी हम आपको वो सारी बातें बताएंगे जो कि आप सुनना चाहते हैं या जो आप हमसे हमें सुनाना चाहते हैं. लेकिन सबसे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना. अब वो गाना कौन सा होगा

किसी वो जो गाना हो रहा है वो होगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल जो कि हम प्ले करने लगे हैं और इस गाने को सुनते हैं और इंजॉय करते हैं और आगे चलते हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइपर प्रोडक्ट्स.

Mukeshji. Zindagi Gulzar hai, sponsored by Super Y Products by Aksa Cosmetics aur Super Y Products by Aksa Cosmetics jo ke aap logo ke liye Aksa Cosmetics wale banate hain aur ek product nahi bahut sare product banate hain ji aur aapki khoobsurti ko banate hain bahut zyada khoobsurat to agar aap bhi aise hi khoobsurat banna chahte hain dikhna chahte hain lagna chahte hain so that aap bhi use karenge Super Y ke products ko अब सुपर वाई के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोग यूज करके अपनी खूबसूरती को मजीद और खूबसूरत बना सकते हैं जी और वो कैसे वो ऐसे कि सुपर वाई की विटामिन सी क्रीम आती है सुपर वाई की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम आती है सुपर वाई की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम आती है इसके अलावा सुपर वाई की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम आती है और साथ में इनके फेस वॉशेस भी आते हैं और अगर इन तमाम के रिजल्ट को इन तमाम प्रोडक्ट्स के रिजल्ट को डबल से ट्रिपल करना हो या मजीद और एनहेंस करना हो तो फिर करना ये होगा कि इसके अंदर आप लोगों ने सुपर वाइट फालो का सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड करना है जो कि आपको मिल जाता है और राइस ब्यूटी सीरम भी मिल जाता है आपको इसके अलावा ब्यूटी सीरम बूस्टर जो कि सुपर वाइट वाले किसी भी चीज के रिजल्ट को एनहेंस करने के लिए उसमें ऐड करने के लिए बनाते हैं ताकि आप खूबसूरत से मजीद और ज्यादा खूबसूरत लग सकें दिख सकें ठीक है तो ये प्रोडक्ट किस तरीके से आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं वो आगे चल के आपको बताते हैं जी एंड साथ साथ आपको हेल्पलाइन नंबर भी बताते जाएंगे सुपर वाइट वालों का क्योंकि सुपर वाइट वाले नहीं चाहते कि आपको प्रोडक्ट्स ना मिले सुपर वाइट वाले चाहते हैं अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले चाहते हैं कि आप तक हर वो प्रोडक्ट पहुंचे जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले बना रहे हैं

अच्छा सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर है सखर और लाड़काना के लिए 03147754462. ठीक है, इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं सखर और लाड़काना वाले. इसके अलावा जो हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं वो रब्ता करेंगे. मुमताज हसन खान हैदराबाद से इनका ताल्लुक है, इनसे रब्ता करेंगे और अपने करीबी मार्केट्स और एरियाज में अवेलेबल करवाएंगे. तो मुमताज हसन खान का नंबर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा 03702568321. ये हैदराबाद वालों के लिए हैं और सखर और लाड़काना वालों के लिए हैं 03147754462.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
4: अरे नहीं, खुश्क और बेरोनों की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जिसमे आहिन 4 रंग जो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चामरन जो खूबियो जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में.
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन बाय एज ब्यूटी क्रीम.

0: कर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जे में आहिन चावरन जो खूबियों ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ए चावरन जो खूबियों जल्द में फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम दीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जे जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: साथ साथ आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी, तो ज्वाइन कीजिए और साथ साथ सुपर वाइक के प्रोडक्ट को यूज कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं. और वो तमाम तर लोग जो कि गर्मियों की वजह से टैनिंग और छाइयों वगैरह का शिकार हो चुके हैं और पिगमेंटेशन आ चुकी है चेहरे के ऊपर, कॉम्प्लेक्शन डाउन हो चुका है, तो इस मसले का हल आपके पास अब मौजूद है और वो है सुपर वाइक की विटामिन सी क्रीम. और सुपर वाइक की विटामिन सी क्रीम जो कि एंटी डलनेस भी है और एंटी एजिंग भी है, तो अगर आपके फेस के ऊपर फाइन लाइंस या इस तरह का कोई और मसला है तो वो भी खत्म हो जाता है. तो सुपर वाइट की विटामिन सी ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने यूज करनी है, इसमें बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं. ये क्रीम आपकी स्किन को ब्राइटन अप करती है, आपके चेहरे को फ्रेंडनेस देती है, इंक्रीज करती है आपके चेहरे की फ्रेंडनेस को, पोर्स को मिनिमाइज करती है और एजिंग स्पॉट्स को रिड्यूस करती है, आपकी फ्रेंडनेस को इंक्रीज करती है. ऑल स्किन टाइप्स के लिए बिल्कुल सेफ और हेल्दी प्रोडक्ट है, आपकी स्किन को भी हेल्दी बनाती है. तो ये इसकी खास बात है. तो अगर आप इसके रिजल्ट्स को भी डबल से ट्रिपल या फिर डबल से ट्रिपल से ज्यादा कहीं और इनहेंस करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग सुपर वाइट वालों का सुपर ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड कर सकते हैं और आपने बूस्टर को भी बाय कर लेना है इसके साथ. और इस क्रीम के अंदर आप लोगों ने बूस्टर को ऐड करना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसको स्टोर कर लें. रात को सोने से पहले सुपर वाइट के विटामिन सी फेस वॉश से फेस को वॉश करना है एंड देन चेहरे को खुश करके विटामिन सी अप्लाई करना है. ये विटामिन सी ब्यूटी क्रीम सुपर वाइट वालों की जो कि आपको पहले ही 3 दिन में वाजे फर्क दिखा देगी. और सुपर वाइट वालों का ब्यूटी सीरम बूस्टर जो कि आप अपनी क्रीम्स में ऐड कर सकते हैं, आप अपने मॉइस्चराइजर्स में ऐड कर सकते हैं, आप अपनी हैंड एंड फीट क्रीम में ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा आप जब कोई फेशियल वगैरह कर रहे हो तो फेशियल के हर स्टेप में आप लोग ब्यूटी सीरम बूस्टर की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके उस वेरिएंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. सो दैट आपके जो रिजल्ट हैं आपके फेशियल के या फिर आपकी ब्लीच क्रीम के या फिर आपकी ब्यूटी क्रीम के या फिर आपके मॉइस्चराइजर के वो बढ़ जाते हैं और आपको मिलती है डबल से ट्रिपल फेयरनेस. तो अगर आप भी इसी तरीके से खूबसूरत बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, लगना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी खूबसूरती भी डबल से कहीं ज्यादा ट्रिपल हो, सो दैट आप यूज करेंगे सुपर वाइट के ये प्रोडक्ट जो कि मैंने आपको बता दिए हैं. इसके अलावा जी सुपर वाइट वालों की सिर्फ विटामिन सी क्रीम ही नहीं और दूसरी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो कि सुपर वाइट वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं. सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जो कि 3 दिन में विजिबल रिजल्ट्स देती है, तो 3 दिन में विजिबल रिजल्ट्स देने के साथ साथ ये कोरियन फार्मूले के साथ तैयार की गई है. कोरियन ग्लास स्किन देगी सुपर वाइट की कोरियन फार्मूला स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम. और इसमें भी आप लोग सुपर वाइट वालों का ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड करते हैं सो दैट इसके रिजल्ट्स भी जो है ना डबल से ट्रिपल हो जाते हैं. और आप देखते हैं, ठीक है, जब आप इसको यूज करें तो उसके साथ खरीद करना ना भूलें सुपर वाइट के स्ट्रॉबेरी फेस वॉश को. सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी फेस वॉश रात को सोने से पहले या फिर दिन में जितनी भी बार फेस को वॉश करते हैं तो आपने इसी से फेस को वॉश करना है एंड देन सुपर वाइट वालों की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम को अप्लाई करना है. आप इसको डे में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं. सेम विटामिन सी की जो ब्यूटी क्रीम है आप उसको डे में भी अप्लाई कर सकते हैं और नाइट में भी. अगर आप डे में नहीं करना चाहते तो आपने रात में इसको लाजमी पाबंदी से लगाना है, देन आपको 3 दिन में वाजे फर्क भी नजर आएगा और जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्किन से रिलेटेड जितने भी मसले हैं, एक्नी है, छाइयां हैं, झुर्रियां हैं, डलनेस है या फिर आपका जो फेस है वो पिगमेंटेशन का शिकार हो चुका है, तो ये सारे मसले हल हो जाते हैं. और सिर्फ फेस के मसले मसाले ही नहीं, हैंड्स एंड फीट के लिए भी सुपर वाइट वाले इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि उससे आप जो है ना अपना फार्मूला तैयार कर सकते हैं हैंड्स एंड फीट के लिए. आप वो कैसे करेंगे वो आगे चल के आपको बताती हूँ, साथ साथ में आपको हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन करवाती जाऊंगी. तो हेल्पलाइन नंबर है सखर और लाड़काना वाले, डायल कीजिएगा 03-14-77-544-62. इसके अलावा मुमताज हसन खान हैदराबाद से, हैदराबाद वाले डायल करेंगे 03-70-256-8321, ठीक है, ये डायल करेंगे. اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں جی. آپ لوگوں کی بہت ساری لائیو کالز جو کہ مجھے ریسیو ہوتی جا رہی ہیں, ہم کالز کو انٹرٹین کریں گے. بہت ساری لائیو کالز مجھے ریسیو ہوتی جا رہی ہیں, سو ٹیلی فون لائنز آپ لوگوں کے لیے اوپن کر دی گئی ہیں سو دیٹ آپ لوگ کال کر سکیں. سو فرسٹ کالر چیک کریں گے جی. ہیلو
1: جی, السلام علیکم.
0: رشید احمد کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
1: جی, الحمدللہ.
0: اوکے, پروگرام سن رہے ہیں
1: جی؟ پروگرام تو مگر کافی عرصہ تک پوزیشن رہی, بس اسی طرح آپ کو یاد کرتا ہے. رخسار پاس ہی ہے, کافی عرصہ سے میں کبھی ٹرائی کر دے سنتا تھا, کبھی مایوس بھی ہو جاتا میں کہ کال کرنی نہیں. تو آج تو میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ جو اگلا اسٹیٹمنٹ ہوگا نا اس میں بھی اگر کال کی تو شکوا ضرور کروں گا کہ تھوڑا سا ٹائم پلیز بلا دیں
0: پروگرام کا.
1: نہیں, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے گلوکاری کا
0: اس کو بڑھا دیا جائے,
1: بڑھا دیں تاکہ ہم جیسے کچھ دور بیٹھے لیٹ پہنچتے ہیں نا, تو کچھ چار پانچ کالر ہوں ایسے جو جن کی کار مل جائے کوئی مایوس نہ ہو.
0: چلیں, آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ لوگ اتنا شوق سے سنتے ہیں کہ آپ ٹائم بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر اسی طریقے سے یہ چیزیں میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں یقین کریں گے میں دو گھنٹے کی جگہ جو ہے چار گھنٹے شو کر رہی ہوتی, لیکن جو ٹائم ہے اسی کو لے کے ہم چلیں گے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ سارے لسنرز کی کال لگے اور آپ سب کی لگے.
1: جی, تو گزارش ہے کہ میں آپ کی مینجمنٹ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے جو اسٹیشن مینیجر ہیں ڈائریکٹر صاحب ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو سانگ گا کے سنانا اور پھر کوئی فرمائش لگانی, اس کا تھوڑا سا اس کا ٹائم تھوڑا سا بڑھا,
0: اس کا ٹائم بھی بڑھا دیں اور ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر اس کے پیسے بھی بڑھا دیں.
1: نہیں تو میں نے ابھی آپ کو جو سانگ سنایا ہے آپ نے مجھے پیسے دیے.
0: نہیں مطلب آپ, میں آپ کو پیسے کیوں دوں گی, ہمارا جو ہے نا لین دین کا نہیں ہے, لین دین جو ہے نا میرا وہ مینجمنٹ سے ہے. ہاں جی بالکل, اگر وہ میری ٹائمنگ بڑھاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ظاہر سی بات ہے کہ پیسے بھی تو بننی چاہیے نا.
1: وہ تو ٹھیک ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, ہمارے بس میں ہوتا تو ہم الگ سے ایک فنڈ قائم کر دیتے آپ کے لیے, جتنے سانگ اتنے سو روپے.
0: اتنے سو روپے؟ سو روپے تو بہت کم ہے,
1: سو کم ہے تو دو سو کر لیتے.
0: پھر میں مزاق کر رہی تھی,
1: لیکن ہماری کمیٹی بنتی نا, ہماری مینجمنٹ بنتی.
0: یہ بات ہے, یہ بات ہے کہ روز کے جو جتنے بھی سیگمنٹ ہوتے ہیں نا, جتنے بھی لوگ آتے اتنے سو روپے میرے پاس جمع ہو جاتے. کیا اچھی بات کہی ہے آپ نے.
1: ہاں تو آپ تو یہ تو ان پہ منحصر ہوتا نا, وہ سو روپے مقرر کرتے ہیں, دو سو کرتے ہیں.
0: یہ بڑا اچھا بزنس آپ نے مجھے بتایا ہے, اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا.
1: رابطہ نہیں ہے مطلب ایسا کہ آپ کر سکے, مگر یہ ہے کہ آفر موجود ہے.
0: آفر موجود ہے. اچھا اسی بات پہ ایک اور آفر میں آپ کو دے رہی ہوں. پروگرام تو آپ سن ہی رہے ہیں, سپر وائر کی تعاون سے جو پروگرام ہے آپ تک اب پہنچایا جا رہا ہے, تو مجھے بتائیں کہ سپر وائر کی جو پروڈکٹ ہیں رشید احمد آپ کب استعمال کر رہے ہیں اور کب لے رہے ہیں, اپنے لیے لیں گے, فیملی کے لیے لیں گے, کس کے لیے لیں گے؟
1: جی وہ سنتے ہیں ہم ماشاء اللہ, اور جو کوئی اچھی پروڈکٹ ہوتی ہے نا اس کے لیے اچھی آر جے جو ہوتی ہے نا, یا آر جے ہوتا ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے, اور آپ کی مینجمنٹ بہت سمجھدار ہے, اچھی پروڈکٹ کے لیے ایک اچھی آر جے کا انتخاب کیا ہوا ہے, اور آپ جو بھی کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں. یہ جو کریم ہے یہ ماشاء اللہ ضرور ضرور ضرور جو ہے نا وہ اپنا رزلٹ دیتی ہے اور جلد از جلد دیتی ہے, ٹھیک ہے نا جی.
0: تو
1: باقی میرے پیارے بھائی ہیں فراز علی, میں ان کے ذمہ لگاتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ مجھے جو ہے نا بھیجتے ہیں, یہ کریم مجھے بھیجیں, تو وہ اکثر چیزیں مجھے بھیجتے رہتے ہیں, میں ان کو بھیجتا رہتا ہوں بدریہ ڈاک. तो इंशाल्लाह मंगवाएंगे तो फैमिली के लिए ही मंगवाएंगे, अकेली क्रीम तो नहीं मंगवा सकता ना मैं।
0: चले जरूर जरूर जरूर मंगवाइएगा। और कुछ कहेंगे?
1: और फिर आप आपके मतलब क्रीम का रिजल्ट भी बताएंगे, तो जब आपकी बातों में सच्चाई है ना तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट है जिसकी आप एडवर्टाइज कर रही हैं वो भी इंशाल्लाह सच्ची होगी।
0: इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह।
1: हाँ जी हाँ जी। तो क्या आप एंट्री भी जमा करती हैं?
0: मैं क्या जमा करती हूँ?
1: ये एंट्री वगैरह मतलब कोई इनामात वगैरह कोई दो तीन माह के बाद अंदाजी हो रेफर वगैरह की जिसकी प्रोडक्ट खरीदी जा रही।
0: नहीं नहीं ऐसा कुछ जमा नहीं करते, हम सिर्फ आपको जो है ना बताते हैं और जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं और जो स्पॉन्सरशिप हमें मिलती है तो अच्छे प्रोडक्ट्स को लेके हम अपने प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करते हैं और आप तक वो प्रोडक्ट्स बताते हैं, आपको बताते हैं ताकि आप यूज करें और उससे फायदा उठा सकें। ठीक है, तो ऐसे ही सुपर वाई के प्रोडक्ट्स भी चले। ठीक है, बहुत सारा ख्याल रखें।
1: कल
0: इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये रहा आपका गाना।

0: गा कि या कितनी दफा कॉल मिलाई तो कॉल लग गई है?
1: अभी तकरीबन 15-20 बार
0: मिलाई है। चले जबरदस्त, अब कॉल लग गई है। कोई अच्छे से गाना लेकर आए हैं?
1: जी हाँ, तीसरी बार कॉल लगी है।
0: ओके चले लग गई लग गई लग गई। अब गाना सुना दे।
1: हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी।
0: वाह।
1: हमें

0: बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
1: अरे वाह,
2: मेरी आवाज वापस इतनी आ रही
1: है। अच्छा वापस आ रही है, आपको भी वापस आ रही है।
2: आपके जब से मैं आपका शो ज्वाइन किया है ना, तब से आपकी आवाज वापस ही आ रही है।
1: वापस ही आ रही है तो अच्छी बात है ना, आपको तो पता
2: गाने में थोड़ा है ना डिस्टर्ब हो रहा हूं।
1: गा रहे
2: गाने में काफी डिस्टर्ब हो रहा हूं।
1: चले खैर कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। और कुछ कहना चाहेंगे इस माँ के शोर?
2: बस
1: बस हो गया
2: हो गया। थैंक यू।
1: ओके थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाई प्रोडक्ट्स, बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
2: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
1: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
0: सुपर वाइट। खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम एलोवेरा एवोकाडो अवहां जी सेंसिटिव

0: स्किन के अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ टिन दिहन में डार्क स्पॉट्स एक्नी ए स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग ए दिए शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक ए निखार जो बेहतरीन इंतखाब आर्च ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड साईं कुछ खबर अथव
1: छा थियो सोणी
0: बिंदियन खां सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे नई बैटरी कदे आणींदा
1: सोणी हन महंगाई जे दौर में नई बैटरी जी जरूरत ही कोने पंहिंजी पुरानी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारन दा अजु ही खणी पियो वणा उहे अधु कीमत में पुरानी बैटरी में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लगाए बैटरी खे सफा नओं करे छॾींदा
0: साईं पो इहा बैटरी जल्दी त खराब कोन थींदी
1: न न सोणी सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि बैटरी जी
0: वाह वाह पो साईं जल्दी करियो हाणी वञो ऐं बैटरी ठाराए अचो
1: सरगोदा बैटरी सर्विस तां पंहिंजे यूपीएस ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे नओं बणायो
2: ऐं हा हाणे कंहिं बि कंपनीअ जे सभ वारी बैटरीअ में सभु नवां सेल लॻायो सिर्फ़ 3500 रुपियनि में 6 महीननि जी गारंटीअ सां ऐं ॿियनि सभिनी बैटरियुनि जा सेल पिणु मुनासिब क़ीमत में लॻाया वञनि था हीअ ऑफर महदूद मुदत लाइ आहे त पोइ देरि छा जी अॼु ई अचो पंहिंजी पुराणी बैटरीअ खे नओं बणायो
1: मिलंदड़ जुलंदड़ कम खां धोखो न खाईंदा सुठे मयारी कम जे लाइ अॼु ई तशरीफ़ आणींदा सरगोदा बैटरी सर्विस म्यूनिसिपल स्टेडियम नज़्द नजम मेडिकल स्टोर वारी घिटी पुराणो बस स्टैंड लाड़काणो राबते जे लाइ मोहम्मद फारूक मोबाइल नंबर 03156829924
3: अदा गुलाब तोखे त ख़बर आहे पाण वारो हनीफ़ घणे वक़्त खां बीमार आहे कपिड़ा मेरा पातल पंहिंजे मुंहुं वती थो ॻाल्हाईंदो ऐं पाण खे त बीमार समुझे ई कोन थो को ॾिसु त ॾे

0: अब थोड़ा मी टाइम बनता है।
1: हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
0: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
1: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर वाइट।
6: अजरक के रंगों से रंगी,
7: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
6: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
7: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: मेडिकल स्टोर एंड जनरल स्टोर ऐसी दस्तियाब है। हेल्पलाइन नंबर 03141705558।
3: अदा छा गाला डाडो परेशान पे लगी भाऊ छा कया।
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: पटी लगाइण, डंदन में माकोड़ी लगाइण, लेजर ऐं चांदीअ वारी भराई करण, ब्लीचिंग ज़रिए डंदन खे अछो करण, क्राउन ब्रिज, पोर्सिलिन डंद, ज़रकुनेन ऐं आर्टिफिशियल यानी डेंचर डंद लगाइण, वात ऐं मुंहं जो एक्सीडेंट थियल जी सर्जरी ऐं प्लेट लॻाइण जो जदीद तरीक़े सां इलाज कयो वञे थो। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद यूसुफ अली शाह, डंदन ऐं वात जे बीमारियुनि जो माहिर सर्जन। एड्रेस: अली हॉस्पिटल, वगन रोड, लाड़काणो। टाइम: रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं। यादि रखंदा डॉक्टर साहब, राचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 4 बजे ताईं वेझो इमाम मेडिकल सेंटर जेकबाबाद में मरीजनि जो मुआइनो कंदा आहिनि। राब्ते जे लाइ फिदा हुसैन, मोबाइल नंबर 0334220514।
1: रक्षन जा धिका नथी खाई सघां, गाॾी छो नथो वठी?
2: रिदा, गाॾी वठण को सवलो कम कोन्हे, ऐं मूंखे ड्राइविंग किथे ईंदी आहे?
1: इन्हनि ॿिन्हिनि मसलनि जो हल आहे अलकासमिया कार शोरूम ऐं कार ड्राइविंग स्कूल लाड़काणो।
3: जी हाँ, अलकासमिया कार शोरूम ते नईं ऐं पुराणियुनि गाॾियुनि जी ख़रीदो फ़रोख़्त कई वेंदी आहे। अलकासमिया कार ड्राइविंग स्कूल ते ड्राइविंग जी सिख्या सां गॾु इंजन जी मालूमात, रोड सेंस, हाईवे ऐं मोटरवे बुक जी मालूमात पिणु ॾिनी वेंदी आहे।
1: नंढियुनि ऐं वॾियुनि गाॾियुनि सां गॾु आटो ऐं मैनुअल गाॾियूं पिणु सिख्या जे लाइ मौजूदु आहिनि।
3: अलकासमिया कार ड्राइविंग स्कूल, एड्रेस: स्टेशन रोड, लग सपना होटल, गिटी, लाड़काणो। अलकासमिया कार शोरूम, अलकासमिया कार शोरूम ते नईं ऐं पुराणियुनि गाॾियुनि जी ख़रीदो फ़रोख़्त कई वेंदी आहे। गाॾियुनि जे कागज़ात जो कम, ट्रांसफर, फाइल वेरिफिकेशन, CPLC, टैक्स क्लियर कयो वेंदो आहे। अलकासमिया कार शोरूम, एड्रेस: राइस कैनाल रोड, दुबई कार वॉश, लाड़काणो। राब्ते जे लाइ शकील अहमद मौर्य, मोबाइल नंबर 0300-3436-498 ऐं 0331-342-6498।
4: खुशखबरी, लाड़काणे जो मशहूर ऐं मेडिकल जी दुनिया जो वॾो नालो प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जमाल सिद्दीकी, MBBS, FCPS, DOMS, हज़ारती गोल्ड मेडलिस्ट, अखियुनि जे पर्दे ऐं बीमारियुनि जो माहिर फेको सर्जन। हिते अखियुनि जे बीमारियुनि, रेटिना यानी अखियुनि जो पर्दो, कारो पाणी, मोतियो पाणी, उन खां अलावा शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जे करे पैदा थींदड़ अखियुनि जे पर्दे जे बीमारियुनि जो इलाज ऐं ऑपरेशन जदीद मशीननि सां कयो वञे थो। जिना अस्पताल कराची, लियाकत मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, खैरपुर मेडिकल कॉलेज, गुलाम अहमद मेडिकल कॉलेज सखर ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणे जो अॻूणो चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जमाल सिद्दीकी, अखियुनि जे पर्दे ऐं बीमारियुनि जो माहिर फेको सर्जन। इंडस हॉस्पिटल, लग लेडीज जेल रोड, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां राति जो 9 बजे ताईं, अंगारो, खमीस ऐं आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 2 बजे ताईं। यादि रखंदा, जुमे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि रहंदी। राब्ते लाइ मोबाइल नंबर 0300-3410560 ऐं 0317-327-6619।
1: है ठीक है, और साथ साथ जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पे प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन कीजिएगा।

0: हैंड्स एंड फीट्स के फार्मूले की. तो हैंड्स एंड फीट्स का फार्मूला आप सुपर वाई के प्रोडक्ट से ही तैयार कर सकते हैं. सो आप लोग कैसे कर सकते हैं, आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि सुपर वाई के या सुपर वाई की कोई भी ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने लेनी है, सुपर वाई की कोई भी ब्यूटी क्रीम लेने के बाद उसमें आप लोगों ने पेट्रोलियम जेली ऐड करनी है. कौन सी? सुपर वाइट की. सुपर वाइट की पेट्रोलियम जेली को ऐड करेंगे, ठीक है. सुपर वाइट की पेट्रोलियम जेली जो कि आपको डिफरेंट अलग अलग वेरिएंट्स में मिल जाती है, आपको लेमन में मिल जाती है, पिंक में मिल जाती है, कोकाओ बटर में मिल जाती है, ऐसे ही और भी बहुत सारे दूसरे फ्लेवर्स हैं जिनमें आपको ये मिल जाती है, ठीक है जी. तो जरूर आप लोगों ने ट्राई करना है और एक अदद अपनी पसंद से फ्लेवर चूज करके पेट्रोलियम जेली लेनी है और साथ में एक अदद सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम लेनी है. और सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम की क्वांटिटी के बराबर आप लोगों ने लेनी है पेट्रोलियम जेली, ठीक है. पेट्रोलियम जेली लेने के बाद आप लोगों ने दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है. तैयार है आपका हैंड्स एंड फीट्स फार्मूला. अगर आप चाहते हैं कि इसके रिजल्ट्स को डबल से ट्रिपल करें तो सुपर वाइट वालों का ब्यूटी सीरम बूस्टर भी ऐड कर लें, ठीक है. जितनी भी ट्रेनिंग है हैंड्स एंड फीट्स के ऊपर, डार्क नकल्स हैं और हाथों की जो जल्द है वो बेरोनक सी रहती है या पैरों की जल्द जो है बेरोनक सी रहती है, साफ सुथरे नहीं नजर आते. सो ये तमाम जो मसले मसाइल जो कि हैंड्स एंड फीट से रिलेटेड तमाम लोगों को करने पड़ रहे होते हैं, चाहे फिर वो मर्द हजरात हो या फिर खवातीन हो, ठीक है. दोनों ही यूज कर सकते हैं इस फार्मूले को बनाने के बाद, ठीक है. हैंड्स एंड फीट फार्मूला तैयार करने के बाद आप दोनों ही यूज कर सकते हैं और यूज करने के बाद आपको इसके प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है. अच्छा, सोप को भी आप अगर इसके रिजल्ट को और मजीद दुगना करना चाहते हैं तो सुपर वाइट की सोप्स आते हैं जी. सुपर वाइट ऑयल फ्री सोप और साथ में सुपर वाइट का राइस सोप, ठीक है. आप इन सोप्स को अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं जी. और जहां आप दूसरे बहुत सारे सोप यूज कर रहे हैं उनको रिप्लेस करके सुपर वाइट के सोप से आप सुपर वाइट के सोप्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे भी आपके रिजल्ट्स जो है ना वो अच्छे अच्छे आपको दिखेंगे, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको. जरूर आप लोग देखें कि आपको कितने अच्छे और खूबसूरत से रिजल्ट्स मिल रहे हैं सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद. तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को यूज करें और अपना फीडबैक मुझे जरूर दें. इसके अलावा 03000113488 के ऊपर कॉलर मेरे लाइन पे मौजूद होंगे, चेक करेंगे नेक्स्ट. हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: आपको
0: चाचर कल कॉल लगी थी, डेली कॉल नहीं करनी?
1: जी हाँ, कल लगी थी. लाड़काना में सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम मौजूद नहीं है.
0: चले, लाड़काना में मौजूद नहीं है, मैं लाड़काना वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर बता रही हूँ, वो नोट डाउन करें और अवेलेबल करवा लें. थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें. 03000113488. और जो लोग कल कॉल कर चुके हैं वो आज कॉल नहीं करेंगे, ठीक है. कॉल करेंगे कॉल ड्रॉप कर दूंगी, फिर ना कहिएगा बताया नहीं. नेक्स्ट कॉलर, हेलो
2: हेलो
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं?
2: वालेकुम अस्सलाम,
0: कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: अब्दुल हादी बात कर रहा हूँ, लाहौर से.
0: अब्दुल हादी बात कर रहे हैं, पक्की बात है?
2: हाँ.
0: ओके, अब्दुल हादी पहली दफा कॉल कर रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा आप पहली दफा कॉल कर रहे हैं.
2: आपको क्या लग रहा
0: है? मुझे लग रहा है कि आपने पहले भी कई मरतबा कॉल की है, अगर तो मेरा शक सही है. तो बताए, पहली दफा कॉल की है?
2: हाँ, पहली दफा कॉल की है, पहली दफा कॉल की है और पहली दफा ही प्रोग्राम सुन रहे हैं.
0: अच्छा, कहाँ से सुन रहे हैं आप हमें?
2: लाहौर से. बताया तुम्हें,
0: लाहौर से सुन रहे हैं. ओके, लाहौर से सुन रहे हैं. लाहौर में कैसे सुन रहे हैं आप हमें? फेसबुक से?
2: आवाज ऑडिबल से.
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं. किसके दामन से प्रोग्राम है
2: ये? फर्स्ट टाइम सुना है ना?
0: फर्स्ट टाइम सुना है. अच्छा, प्रोग्राम भी फर्स्ट टाइम सुना है, कॉल भी फर्स्ट टाइम की है. ओके, तो मुझे बताएं कि कैसा लगा है प्रोग्राम?
2: आवाज तो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी, इसीलिए तो कॉल की है.
0: आवाज बहुत प्यारी है, इसीलिए तो कॉल की है. अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या प्यारा है वैसे? मेरे ख्याल से मैं जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ वो भी बहुत प्यारे हैं. ओके जी, और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे हमें आप?
2: मेरी आवाज मुझे बैक दिखाई दे रही है.
0: अच्छा वापस आ रही है आपको आपकी आवाज़. चलें इसके साथ आप गुजारा करें और मुझे बताएं कि और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे.
2: आप नश्तर ओएसटी सुना दें, नश्तर ड्रामा का ओएसटी.
0: नश्तर ओएसटी, ओके अभी सुना देते हैं. आपको किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
2: समथिंग एनी एल्स.
0: ओके और कुछ
2: क्या गुनगुना के सुनाना है, क्या करना है?
0: नहीं गा के नहीं सुनाना, गाने वाला सेगमेंट तो खैर खत्म हो गया है, लेकिन ये है कि आपके लिए हम ओएसटी चला देते हैं.
2: ओके ठीक है,
0: ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अब्दुल हादी. अल्लाह हाफिज. और इसी के साथ हम आगे चलते हैं जी, और टाइम बहुत लिमिटेड है, वक्त का मुकाबला शदीद सख्त हो रहा है. जो हम ओएसटी सॉन्ग प्ले करते हैं जी, और ये जो ओएसटी सॉन्ग है मैं चेक करूंगी कि मुझे मिल जाए, क्योंकि जब मैंने सर्च किया तो मेरे सामने ड्रामा आ गया है, ओएसटी नहीं आया है. जो ओएसटी मुझे मिल चुका है और ये कुछ ज्यादा मतलब 8 मिनट का ओएसटी, वाओ 8 और 6 मिनट का ओएसटी. चले इसको सुनते हैं और देखते हैं कि ये जो इतना लंबा गाना है ये है कैसा. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द शो.

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
3: खुश्क और बेरोनो की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन चार रंजू खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चार रंजू खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जहे जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सर कॉस्मेटिक्स.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
2: अगर खूबसूरती खपे तो आर्च अपनायो. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो अवां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 3 दिन में. डार्क स्पॉट्स, एक्नी और स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और दिए शानदार मिरेकल ग्लो. कुदरती चमक और निखार जो बेहतरीन इंतखाब. आर्च ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड.
5: लाड़काने वसल लाए खुशखबरी. डॉक्टर अजीत कुमार MBBS FCPS डर्मेटोलॉजी चमड़ी जे बीमारियों जो माहिर हिते मोहिड़ा डडर मल्लो पुरानी खरस वार चरो पुरानो फट चित्री लैशमेनियासिस चेहरे जा दाग बग नहन जो खराब थन वारन जा मसला एलर्जी ए औरतन जे चेहरे ते गैर जरूरी वारन जो इलाज बेहतरीन नमूने कयो वजे थो. डॉक्टर अजीत कुमार चमड़ी जे बीमारियों जो माहिर. एड्रेस अली हॉस्पिटल वगड़ रोड लाड़काणो. टाइम रोजानो शाम जो 4:00 का रात जो 8:00 तक ए आचर दे क्लिनिक बंद रहंदी. वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03124344689.

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: ऐ बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइक छा डैमेज ऐ डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट ड्राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियो ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चावरन जो खूबियो जल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कन ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट गरुगत, सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ चेंज करके कुछ अच्छा सा प्ले कर दूँ, और वो चेंज करने के बाद जो अच्छा सा मैं प्ले करूँगी, और मुझे समझ नहीं आ रहा जो मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छे गाने आ जाए ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा है और मैं कौन सा प्ले करूँ. तो इसी सिचुएशन में

100 और साथ साथ कमेंट्स और मैसेजेस को एंटरटेन करते हैं जिन लोगों ने मुझे मैसेज कर दिए हैं. टनी मीरवा से अदी रुखसार, मोहम्मद आजम राजपर हमें सुन रहे हैं, कोट गुल हसन शर तालुका सिंदरी से हैदरबाग शर हमें सुन रहे हैं रुखसार जी भाई. इसके अलावा जी कमेंट्स को इंक्लूड करते जाएंगे. मुगल उमरानी हमें सुन रहे हैं, मोहसिन अली हमें सुन रहे हैं, सिस्टर रुखसार आपका शो वीआईपी है, थैंक यू मोहसिन. मीर मुमताज अली जद्दोई हमें सुन रहे हैं, रजा नियाज मक्सी हमें सुन रहे हैं, ढूंढा है हर जगह पे कहीं पर नहीं मिला, कम से तो घेरा कोई समंदर नहीं मिला, ये तजुर्बा हुआ है मोहब्बत की राह में, खोकर मिला जो हमको वो पाकर नहीं मिला, दहलीज अपनी छोड़ दी जिसने भी एक बार, दीवारों दर ही इसको मिले घर नहीं मिला, वाह, सारी चमक हमारे पसीने की है जनाब, विरसे में हमको कोई भी जेवर नहीं मिला. अरे वाह क्या बात है.

किशोर जिन्होंने अब अपनी आईडी को किशोर कुमार कर दिया है. किशोर कुमार अगर हम आपको सुन रहे हैं तो जाहिर है मोबाइल हाथ में ही है, मोबाइल उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हाथ में है. ठीक है, हाथ में है तो अच्छी बात है, उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और इसके अलावा थैंक यू सो मच इस्मार किशोर, मुझे तो पता ही नहीं था, आपने मुझे बता कि मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया. इस्लामिक वीडियोस में कमेंट किया है. अच्छा, मीर मुमताज अली जतो ही हमें सुन रहे हैं, इसलिए कहा गया कमेंट. अब्दुल जी कैसर हमें सुन रहे हैं. इमरान मलिक कहते हैं सुपर वाइट नाइस क्रीम. सरफराज अली कहते हैं गुड मॉर्निंग, हाय रुसार जी, हाउ आर यू, योर शो इज नाइस. थैंक यू सरफराज अली. इसके अलावा नजीर खोसो हमें सुन रहे हैं, नजीर खोसो थैंक यू. अब्दुल गफ्फार रान हमें सुन रहे हैं. अली रजा दुबई से हमें सुन रहे हैं, थैंक यू अली रजा. अरशद मरी हमें सुन रहे हैं, सलाम कैसे हैं. वालेकुम असलाम. अच्छा.

और इसके अलावा जी मेरे जाने का वक्त आ रहा है करीब, तो लास्ट में हम अच्छा सा गाना प्ले करेंगे और सुपर वाई के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोगों ने बाय करने हैं, और अगर अभी तक नहीं किए तो वेरी बैड करने चाहिए, जल्दी से ले लें और लेने के बाद यूज कर लें, और यूज करने के बाद अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह करें कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ash Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
7: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.

0: वफाकी सरकार केपी में इमरजेंसी ऐं गवर्नर राज लागू करे छॾियो। वफाकी काबीना जे केपीअ में इमरजेंसी लॻाइण जी मंज़ूरीअ खां पोइ सदर आसिफ अली ज़रदारीअ समरीअ ते सही करे छॾी। आइन जे आर्टिकल 232 ऐं 234 तहत इमरजेंसी लॻाइण जी समरीअ ते सही कई। ज़रियनि मूजिबि गवर्नर फैसल करीम कुंडीअ खे सूबे जो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव बणायो वेंदो। ज़रियनि मूजिबि 12 ज़िलनि जा इंतिज़ामी मामला धार करण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। अगूणे फाटा जे 8 DI खान लकी मरवत ऐं कोहाट ज़िलनि में कंट्रोल वफ़ाक वटि हूंदो। 12 ज़िलनि लाइ धार सेक्रेटरी ठहंदा, हिकु एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऐं हिकु एडिशनल IG पुलिस मुक़ररु थींदो। छा मुल्क दुश्मनीअ ते खामोश तमाशो? पाकिस्तान खे ॿीहर तबाही जे किनारे ते पहुचाइण चाहे थो। पाकिस्तान खे नुक़सान रसाइण वारी हर कोशिश खे नाकाम बणाईंदासीं, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास खे ख़िताब। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त शाही घड़ी घड़ी पंहिंजी रांदि वरजाइण चाहिनि था। इस्लामाबाद ते ॿीहर चढ़ाईअ जो मनसूबो जोड़ियो वियो आहे, ईअं न थींदो ऐं कानून पंहिंजो रस्तो अख़्तियार कंदो। केपी हुकूमत दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ वफ़ाक सां सहकार करण में तयार न आहे। दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ हिकु लफ़्ज़ बि न पिया ॻाल्हाइनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream

0: इन नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। GAFM 88 की आवाज।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
3: अच्छा, variants सबके different, लेकिन choice सबकी है।
5: Super white.
6: साईं, कुछ खबर अथव?
7: छा थियो सोणी?
6: ॿिनि ॾींहनि खां सोलर वारी बैटरी ख़राब थी पई आहे। नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
7: सोणी, हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरी जी ज़रूरत ई कोन्हे। पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा।
6: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
7: न न सोणी, सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि बैटरीअ जी।
6: वाह वाह, पोइ साईं जल्दी करियो, हाणे वञो ऐं बैटरी ठाराए अचो।
7: सरगोदा बैटरी सर्विस तां पंहिंजे UPS ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे नओं बणायो।
8: ऐं हा, हाणे कंहिं बि कंपनीअ जी सभु वारी बैटरीअ में सभु नवां सेल लॻायो, सिर्फ़ 3500 रुपियनि में 6 महीननि जी गारंटीअ सां। ऐं ॿियनि सभिनी बैटरियुनि जा सेल पिणु मुनासिब क़ीमत में लॻाया वञनि था। हीअ ऑफर महदूद मुदत लाइ आहे, त पोइ देर छा जी? अॼु ई अचो, पंहिंजी पुराणी बैटरीअ खे नओं बणायो।
7: मिलंदड़ जुलंदड़ कम खां धोखो न खाईंदा, सुठे मयारी कम जे लाइ अॼु ई तशरीफ़ आणींदा। सरगोदा बैटरी सर्विस, म्युनिसिपल स्टेडियम नज़्द नजम मेडिकल स्टोर वारी घिटी, पुराणो बस स्टैंड लाड़काणो। राबते जे लाइ मोहम्मद फारूक, मोबाइल नंबर 03156829924।
9: खुशखबरी, अल राफे फाउंडेशन ए पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन लाड़काणे जे सहकार सां आपका रियायती क्लिनिक लाड़काणे में हाणे मुख़्तलिफ़ शोबनि जा माहिर स्पेशलिस्ट ऐं तजुर्बेकार डॉक्टर हर क़िस्म जे बीमारियुनि जी इंतिहाई रियायती फीस में चकास कंदा, जहिड़ो के शुगर, मैदे, जिगर, गुर्दे, रगुन, हॾन, दम, छातीअ, ज़हनी बीमारियुनि, ॿारनि जे बीमारियुनि खां अलावा सभिनी बीमारियुनि जे इलाज लाइ नामवर डॉक्टर्स मौजूदु आहिनि, जहिड़ो के प्रोफेसर डॉक्टर हाकिम अबड़ो, प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद शेख, प्रोफेसर डॉक्टर आलम इब्राहिम सिद्दीकी, प्रोफेसर डॉक्टर अजीज जलबाणी, प्रोफेसर डॉक्टर बदर जुणेजो, प्रोफेसर डॉक्टर अली हैदर बलोच, प्रोफेसर डॉक्टर शेख खालिद मोहम्मद, डॉक्टर नईम अहमद सुमरो, डॉक्टर अरशद भुट्टो, डॉक्टर श्याम लाल वगैरह। आपका रियायती क्लिनिक लाड़काणो, जिते मिले अवां के कराची जे नामवर अस्पतालुनि जहिड़ो माहौल। टाइम रोजानो सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। एड्रेस: जीजल अमर वेलफेयर अस्पताल, वेझो पासपोर्ट ऑफिस, लाड़काणो। राबते जे लाइ मोहम्मद अली अबड़ो, मोबाइल नंबर 03400362646। खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर रेशम गली लाड़काणे में दाऊद एस्थेटिक क्लिनिक जो इफ़्तिताह थी चुको आहे। डॉक्टर इरम जुणे जो MBBS, RMP, D-Drum, E-Drum, UK, कंसल्टेंट कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ डर्माटोलॉजी, चांडका मेडिकल कॉलेज ऐं अस्पताल लाड़काणो। हिते चमड़ीअ जी बीमारियुनि जहिड़ो की ख़ारिश, मल्लो, पुराणो फटो, बग, ॾढ, मोहिड़ा, वार चरियो, चेहरे जा दाग, चेहरे ते गैर ज़रूरी फुड़नि जो इलाज, गंजपन जो इलाज PRP ज़रिए, हाइड्राफे जो इलाज मशीनन सां, ऐं औरतुनि जे चेहरे ते गैर ज़रूरी वारनि जो इलाज लेज़र थेरेपी सां कयो वञे थो। डॉक्टर इरम जुणे जो चमड़ीअ जे बीमारियुनि जी माहिर। एड्रेस: दाऊद एस्थेटिक क्लिनिक, अली शॉपिंग सेंटर, रेशम गली, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो 2 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं, ऐं आचर ते शाम जो 4 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं मुफ़्त चकास कई वेंदी आहे। याद रखंदा, इंडस मेडिकल सेंटर, लेडीज जेल रोड, लाड़काणे ते रोज़ानो शाम जो 5 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं, आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां منجن جو 2 بجے تائیں ائے جمعے تے 1 بجے کھا 3 بجے تائیں مفت چکاس کی ویندی ہے رابطے ہیں معلومات کے لیے 0333-6541-355
5: چہرو پانچ الگ سنانپ رکھے تو ہر سنانپ کے گرجے خاص خیال ایکسپورٹ بیوٹی کریم کمبائنڈ وائٹنگ فارمولا ڈے اینڈ نائٹ کریم سانگڈ اواں جی روزانی اسکن کے روٹین جو حصو نرمی جو احساس تازگی جو اعتماد کیئر جے کا ہر ڈی اواں سا گڈ ہو جے ایکسپورٹ بیوٹی کریم خوبصورتی جو اعتماد ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے ایکسپورٹ بیوٹی کریم سانگڈ ایکسپورٹ بیوٹی سوپ ضرور استعمال کندا شہر جے ہر میڈیکل स्टोर एंड जर्नलिस्ट

0: अब थोड़ा मी टाइम बनता है।
1: हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
0: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
1: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
0: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
0: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
2: सुपर वाइट।
3: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अलग से अगर आप जो है ना फायदा हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज जरा मैं बताती चलूं कि जो मैं आप लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूं या फिर बताना चाहती हूं या फिर बता देते हैं सारे प्रोग्राम के अंदर वो तमाम बातें आप लोगों की जिंदगी के ऊपर जो है ना वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि जो लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर चुके हैं उनको अच्छे से मालूम है कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती के ऊपर किस तरह से काम करता है और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए क्यों जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है। ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इजीली परचेज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, हर लोगों के लिए है। और जनाब सबसे बेहतरीन बात मेडिकेटेड फार्मूला है। तफसीलन बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। जनाब प्रोग्राम में आप लोगों का साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को भी पता तो चले ना कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए क्यों और कैसे जरूरी है। यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग हमें सुन रहे हैं सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ यहाँ पर आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, मुझे जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत के फहालत कैसे ही आपकी हालत, उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबकुल मूड के साथ सुबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं सभी का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया। और बहुत सी खवातीन हमारे साथ मौजूद होती हैं, खास करके बहुत से लोग ऐसे जो कि अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी। बहुत सारी ऐसी खवातीन, आंटियां, बाजियां, अम्मियां हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। तो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए कि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला। बिकॉज आली रे आली सिदर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के स्माइल लाते हैं। और यहाँ पर ऐसा करते ही आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा सा कलाम हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुन लेते हैं, उसके बाद जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास आते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। और आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।
1: कौन है

क्या बात है, आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के चर्चे हो रहे हैं, आपके थोड़े बहुत से खर्चे कराएंगे जनाब। ऐसा होता है ना कि भाई जब खूबसूरती की बात आ जाती है तो क्या खर्चा और कैसा खर्चा। आप लोगों को अगर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो कि भाई अपने खूबसूरती को ना मेंटेन रखने के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को अगर हम यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं तो आप लोगों से कुछ ऐसा वैसा नहीं करवाएंगे, बस आप लोगों को सही तरीके से सही राह पर चलाएंगे कि भाई आपने जो है ना ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दौड़ में अगर आप चल रहे हैं तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं क्योंकि भाई आप लोगों के चेहरे पर निखार तो नहीं लाते बल्कि उल्टा आपके चेहरे पर खराबी ही लेकर आते हैं। अगर आपके चेहरे की स्किन टोटली खराब हो चुकी या फिर आप उस सिचुएशन में जरा फंस चुके हैं आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आप सही तरह से और सही तरीके से अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, खूबसूरती को मेंटेन रख सकते हैं और हमेशा के लिए खूबसूरत रह सकते हैं, जिसमें जाहिर सी बात है आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मशवरा दिया जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी कराते रहेंगे और अपनी खूबसूरती को मेंटेन भी करते रहेंगे। उनके अलावा अगर ऐसा प्रोग्राम की अगली बधाइयों था अजय प्रोग्राम जो टॉपिक अच्छा हूँ दोनों तरफ ही भी अच्छी बनी था। आज के प्रोग्राम का जो सवाल होगा आप लोगों से जो पूछूंगी वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आपने मुझे बताना है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसका कोई ऑफिशियल कैपिटल ही नहीं है। हाँ जी, यानी कि ऐसा होता है ना कि हर मुल्क का एक ऑफिशियल कैपिटल होता है, तो आप मुझे बताएं कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसका कोई ऑफिशियल कैपिटल ही नहीं है। बिल्कुल जी, आपने सही सुना, इस सवाल का मुझे जवाब बताएंगे। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से हमें ज्वाइन कीजिए। और क्या तरीकेकार होने वाले हैं आप ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। वहाँ पर आइए, आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ये तीनों काम आप लोगों के करने के होते हैं, तो लाजमी कीजिए अपने हिस्से का काम। मैं तो अपने हिस्से का काम कर ही रही हूँ। ओके जी, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और मुझे बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर दिया करें। उनके अलावा बिल्कुल जी, अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना चाहते हैं लेकिन दिक्कत यह आ जाती है कि आप लोग हमें यानी कि अभी अभी सुनना स्टार्ट कर चुके, आपको नहीं पता कि हम कैसे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर्स बताऊंगी। नंबर्स के ऊपर आपने बस राबता करना होता है, नंबर्स के ऊपर राबता कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि भाई साहब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब आप ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए ना आपको नंबर्स जो है वो जरा नोट करने होंगे। नंबर्स क्या होने वाले हैं, नंबर्स हैं 0233743309, बुरी 300 73 84 84 309। ही नंबर आज को तुम डायल करना, अगर इन नंबर ते तुम्हारे रिस्पांस न थो मिले तो तुम्हारे लिए बियो नंबर आए, उन नंबर ते तुम ट्राई करी सको था, बियो नंबर आए 03-12-50-25-907, बुरी 312-50-25-907। ही नंबर जेको आ तुम्हारे डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर्स से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सको था। ठीक हो गया, डायल कीजिएगा और जरूर से उन्हें बताइएगा कि आप भी परचेज करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं मिलते, तो इन नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए। और साथ साथ मुझे भी बताइए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर अभी तक नहीं। और मुझे साथ साथ जरा सवाल का जवाब भी बताते रहिए कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसका कोई ऑफिशियल कैपिटल ही नहीं। और
इसी साथ साथ आप यहाँ पर मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। और अब्दुल जी कैसर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको भी खुश आमदीद के साथ। तारिक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तारिक भाई को। नजीर कोसों में बलूचिस्तान से सुन रहे हैं, कहते हैं कि इंसान के अल्फाज पर नहीं उसकी नीयत पर गौर करें, क्योंकि कोई डांट कर आपका भला चाहता है तो कोई मुस्कुरा कर आपकी जड़ें काटना चाहता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और गुलबहार जूनी जो हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मायरा है हमारे साथ, ठीक है मायरा कहती है क्या हाल है, कैसी हो, खैरियत से? हाँ जी खैरियत से, प्यारा शो में और आपके साथ। जी जी आप हमारे साथ हैं, आपको वेलकम इन खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ हैं गुड आफ्टरनून, हेलो सिद्रा मुस्कान जी, हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची, आपको भी वेलकम हो गया। एसन अरबानी वालेकुम अस्सलाम, मौला अली सलाम मदद कहते हैं। मुस्कान जी तबीयत कैसी है आपकी, मूड वगैरह ठीक ठाक है ना? आहो जी सफा मजे में, ताम बुधायो कहते आज संडे है ना तो मैं जल्दी आ गया, क्योंकि बाद में रश भी हो सकती है, बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो जल्दी से सेट पर कब्जा कर, सीट पर कब्जा कर लिया, सही किया आपने। और अली रजा लगारी हमारे साथ हैं, गोठ जाम खान लगारी से। अली रजा लगारी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? कहते शो तमाम नाइस है, सॉन्ग असा, अच्छा ठीक है गाना सुनाएंगे, डेडिकेट अजहर लगारी, आकिब लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, अल्लाह बचायो नो नानी के, ओके हो गया जी। वासु भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम वासु भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और आप मुझे बताइएगा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर अभी तक रहता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज आप सारे लोग कीजिए, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल कराइए, और अवेलेबल कराने के लिए नंबर्स के ऊपर रابطہ करते रहिए, कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। मैंने जो ये प्यारा सा गाना लगाया है

0: ਦੇਸੋ ਇਹ ਗਾਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਜਾਏਗਾ
1: ਜਨਾਬ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਦਾ
0: भाई आप सब लोग जानते हैं आबिद भाई को जो हमारे बड़े अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि बेरिया रोड में अच्छे से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को आप सब लोगों के लिए अवेलेबल कराते जा रहे हैं और दिलरुबा ने भी बोला कि भाई मैं आबिद भाई की तरफ से जाकर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कराऊंगी और ये बात भी आपको याद ही होगी कि आबिद भाई आपको डिस्काउंट के ऊपर जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं आप सोचेंगे कि भाई आबिद भाई का यहाँ पर क्यों जिक्र आ चुका आबिद भाई का भाई जिक्र तो आएगा ना क्यों नहीं आएगा आबिद भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप जरूर से अगर आप हमें बेरिया रोड से सुन रहे हैं तो आप आबिद भाई की हाँ जाइएगा वहाँ पर उनकी शॉप भी है तो वो आपको जो है ना डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स दे देंगे लेकिन ये जो गाना हमने लगाया है ना ये प्यारा सा गाना इरफान साहब हमारे सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम तो इरफान साहब की तरफ से आबिद भाई की जो प्यारी सी बेटियां हैं जिनमें मिनसा शामिल है मिन्हा शामिल है ईमान शामिल है वो भी हमारा शो सुन रही
1: हैं
0: तो ये प्यारा सा गाना आबिद भाई की प्यारी सी परियों को डेडिकेट जाता है इरफान साहब की तरफ से जी बिल्कुल इरफान साहब की ये प्यारी सी परियां जो है ना प्यारी सी भतीजियां हैं तो ये गाना उनको डेडिकेट जाता है मिनसा को मिन्हा को और ईमान को इनके लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इन प्यारी सी परियों के अच्छे नसीब करे वैसे बेटियों का जब भी नाम आता है तो मेरे दिल में यही दुआ आती है कि भाई बेटियों का जब भी आप नाम सुने किसी भी प्यारी बच्ची का नाम सुने तो उसके हक में ये दुआ जरूर किया करें अल्लाह पाक इन छोटी सी परियों के नसीब अच्छे करे क्योंकि बेटियों के नसीब जो है ना वो अच्छे हो तो दिल को सुकून मिल जाता है तो आबिद भाई की प्यारी सी परियां हमारे साथ मौजूद हैं और अल्लाह पाक उनको खुश रखे अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे और इरफान साहब की तरफ से ये प्यारा सा गाना उन तीनों परियों को

बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं, हमेशा के लिए हसीन प्यारे और खूबसूरत बन सकते हैं। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन, आप सब ही लगाइए और सब ही खूबसूरत हो जाइए और परचेज करते जाइए। इसी के साथ साथ नंबर्स के ऊपर भी राबता रखिए ताकि आप लोगों के करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल कराते रहे। हमारी टीम माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है, तो आप लाजमी से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, उनको बताइएगा कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है और कहाँ कहाँ से आप जाकर परचेज कर सकते हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे। इसी के साथ गाना सुनते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम हुआ है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते। आप तब तक ऐसे कीजिए, हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, टॉपिक को फॉलो कीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अरे खुश्क और बेरोनक की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कहो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमें आहिन चार अंजू खूबियों एंड कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे एंड चार अंजू खूबियों जल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर एंड रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
3: लाड़काने वास्ते लाए खुशखबरी डॉक्टर अजीत कुमार MBBS FCPS डर्माटोलॉजी चमड़ी जे बीमारियों जो माहिर हिते मोहिड़ा डडर मल्लो पुरानी खारिश वारा चरो पुरानो फट चित्री लैश्मेनियासिस चेहरे जा दाग बग नहन जो खराब छन वारन जा मसला एलर्जी ए औरतन जे चेहरे ते गैर जरूरी वारन जो इलाज बेहतरीन नमूने कयो वजी थो. डॉक्टर अजीत कुमार चमड़ी जे बीमारियों जो माहिर एड्रेस अली हॉस्पिटल वगड़ रोड लाड़काणो टाइम रोजानो शाम
4: अलराफे फाउंडेशन ए पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन लाड़काने जे सहकार सां आपका रियायती क्लिनिक लाड़काने में हाने मुख्तलिफ शोबन जा माहिर स्पेशलिस्ट ए तजुर्बेकार डॉक्टर हर किस्म जे बीमारियों जी इंतहाई रियायती फीस में चका सकंदा जड़ो के शुगर मैदे जिगर गुर्दे रगुन हडन दम छाती जहनी बीमारियों बारन जे बीमारियों खां अलावा सभी बीमारियों जे इलाज नामवर डॉक्टर्स मौजूद आहिन जड़ो के प्रोफेसर डॉक्टर हाकिम अबड़ो प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद शेख प्रोफेसर डॉक्टर आलम इब्राहिम सिद्दीकी प्रोफेसर डॉक्टर अजीज जलबाणी प्रोफेसर डॉक्टर बदर जुणेजो प्रोफेसर डॉक्टर अली हैदर बलोच प्रोफेसर डॉक्टर शेख खालिद मोहम्मद डॉक्टर नईम अहमद सुमरो डॉक्टर अरशद भुट्टो डॉक्टर श्याम लाल वगैरह आपका रियायती क्लिनिक लाड़काणो जिते मिले अवां के कराची जे नामवर अस्पतालुन जड़ो माहौल टाइम रोजानो सुबह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताई एड्रेस जीजल अमर वेलफेयर अस्पताल वेझो पासपोर्ट ऑफिस लाड़काणो राबते जे लाए मोहम्मद अली अबड़ो मोबाइल नंबर 03400362646.
0: चेहरो पांजी अलग सुनाना रखे थो आई हर सुनाना पके घुर्जे खास ख्याल एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम कंबाइंड वाइटनिंग फार्मूला डे एंड नाइट क्रीम सांगड अवाजी रोजानी स्किन केयर रूटीन जो हिस्सो नरमी जो एहसास ताजगी जो एतमाद आई केयर जेका हर डी अवासा गड होजे एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जो एतमाद हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल करन लाए एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम सांगड एक्सपोर्ट ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल कंदा शहर जे हर मेडिकल स्टोर एंड जनरल स्टोर ते दस्तियाब आहे हेल्पलाइन नंबर 03141705558.
5: अदी छा गाला एडो खुश पई नजर अची
0: हां भेण बस खबर ही कुछ एडिया हाने सा औरतू भी पंजी तकलीफ आसानी सा बुधाए सगु थियु
4: जी हां सिंधु जी पहरी फीमेल यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी जे पंजी FCPS यूरोलॉजी जी डिग्री मा लखे रुपया कमाण बदरा लाड़काने में औरतन लाए फ्री अस्पताल शुरू कई आहे जिते बुकिंग जी बीमारिन मसलन पेशाब में रुकावट जलन ए साड़ो जखम बेओलादी बुकी ए मसाने जी नाली में पथरी जो ऑपरेशन जदीद लेजर आई चीरे वसीले करे थी याद रखना डॉक्टर साहिबा चकास बुकिंग जो अल्ट्रासाउंड आई ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त कंदियो आहिन बस कमरे आई दवा जो थोरो खर्चो मरीज पाण भरिंदा आई हां एक्सरे IVP आई CT स्कैन पिणो अध पैसन में कराई दे थी पेशावराना डॉक्टरन दा मरीज खणी विंदड़न जे भुलाण ते तवज्जो न दियो एड्रेस अल निसा मेडिकल सेंटर नद सिटी चौक सचल कॉलोनी लाड़काणो टाइम रोजानो शाम जो 6 बजे खां रात जो 9 बजे ताई आई आचर ते मंझन जो 12 बजे खां शाम जो 5 बजे ताई राबते जे लाए मुस्लिम अब्बासी मोबाइल नंबर 0334224169 छा अवां के या अवां जे कहें बे मिट माइट के छिन गले जो गुदूद पिते जी पथरी थायराइड मोका पेट ए छाती जो बीमारियों या कहें बे ऑपरेशन जो मसलो आहे त हाणे अवां के फिक्र करण न घुर्जे मशहूर ए तजुर्बेकार कंसल्टेंट जनरल सर्जन डॉक्टर प्रिय मेमण MBBS FCPS हाणे अवां जे पंहिंजे शहर में मरीजन जो मुआइनो ए इलाज करे रही आहे एड्रेस तैमूर हेल्थ कॉम्प्लेक्स सामू आर्ट्स काउंसिल सचल कॉलोनी लाड़काणो रोजानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं राबते ए मालूमात जे लाइ 0744752474 डॉक्टर प्रिय मेमण अवां जी सिहत असां जी जिम्मेवारी
6: अनीसा खैर तो आहे मंडकाए तो घुमे धक लगो तई छा
7: हाओ यार अब्दुल्ला एक्सीडेंट में जंग जो हडो भजी पियो तोखे त खबर आ गरीबी हाल आ पैसा भी कोनन के सोचा तो ऑपरेशन किथा करायां
4: भाऊ परेशान न थी लाड़काने में डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी सूफी सतारी वेलफेयर ट्रस्ट तरफा ऑपरेशन मुफ्त करे तो इलाज भी एड़ो सुठो तो करे जो ठीक भी जल्दी थी विंदे गरीब तोड़े अमीर लाए खुशखबरी डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी MBBS FCPS आर्थो हडन ए जोड़न जो माहिर सर्जन कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन सिविल हॉस्पिटल लाड़काणो इते रोजानो हडन ए जोड़न जे मरीजन जो फी सबील लाह इलाज कयो वञे थो जंहिं में रोजानो चकास मुफ्त रिपोर्टूं 40% फ्री एक्सरे 40% फ्री ए ऑपरेशन में डॉक्टर जी का भी फी न आहे असां वटि हडन ए जोड़न जो सूर संदन जो सूर कुन रग जो सूर यूरिक एसिड चेल जो सूर शुगर जा फट हथन पेरन जो सुन थियण पैदाइशी टिड़ियल फिरियल पेरन जो इलाज ए भगल हडन जो ऑपरेशन बेहतरीन नमूने कयो वेंदो आहे एड्रेस कराची मेडिकल सेंटर लग घंटी फाटक लाड़काणो टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं डॉक्टर साहब हर अंगारे ते शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं शान मेडिकल सेंटर वकील कॉलोनी लाड़काणे में मरीजन जो मुफ्त मुआइनो कंदा राबते जे लाइ मोबाइल नंबर 0315878794117 0333754061
8: दुनिया में असान जे मुल्क में शुगर जो मर्ज तेजी सा वधी रहयो आहे
9: इन जा मुख्य कारण मौरूसी मोटापो वर्जिश न करण गैर मयारी غذا जो इस्तेमाल वगैरह आहिन शुगर जे मर्ज जो खास खास अलामतूं ही आहिन बार बार पेशाब जो अचण अचानक वजन घट थी वणण भुख घणी लगण मथे ते दबा हुजण हथन ए पेरन जो सड़न सजे जिस्म में बाह वांगुर महसूस थण कमजोरी महसूस थण पेरन में फट थण टंगुन में गिडियूं पवण ऐं कंध जो गोरो थियण वधीक मालूमात ऐं इलाज जे लाइ बकाई यूनिवर्सिटी कराची जो सनद याफ्ता डॉक्टर नदीम अख्तर कोराई MBBS MPhil कराची यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी
8: वेहण जो हंध गुलाम अकबर शुगर क्लिनिक सामू म्युनिसिपल स्कूल लाड़काणो
9: टाइम रोजानो मंझंदि जो 3 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं ऐं आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 1 बजे ताईं यादि रखंदा जुमे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि रहंदी
8: मोबाइल नंबर 0334325121
10: अदी दसु तडे मुजी नोह के औलादी को नती थिए
11: भेण डॉक्टर सुमेरा बिरोही का पेंजी नियाणी जो इलाज करायो सी हानी मुजी नियाणी औलाद वारी आहे
4: खुशखबरी औरतुन जे बीमारिन जी माहिर डॉक्टर सुमेरा बिरोही MBBS FCPS कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन शेख जैद विमेन हॉस्पिटल लाड़काणो माहिर अमराज नॉर्मल डिलीवरी सीजर ऑपरेशन औरतुन में अंडेदानी बच्चेदानी रसोलिन जो इलाज ऑपरेशन बेओलादी जो खास इलाज टेस्टों अमल दौरान ब्लड प्रेशर शुगर बेन बीमारिन जो इलाज औरतुन में गैर जरूरी पानी खून जो इलाज याद रखंदा गरीब मरीजन के खास रियायत दिनी वेंदी डॉक्टर सुमेरा बिरोही औरतुन जे बीमारिन जी माहिर एड्रेस सिंध मेडिकल सेंटर VIP रोड लाड़काणो टाइम रोजानो शाम जो 5 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं आचर सुबुह जो 11 बजे खां मंझंदि जो 3 बजे ताईं वधीक मालूमात जे लाइ मोबाइल नंबर 0333307155
12: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
13: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहराब और मातली, नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें होती हैं और आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके कितने ज्यादा खूबसूरत हो सकते हैं. हाँ जी, हो सकते हैं जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी. तो अगर आप भी इस्तेमाल करने वाले हैं तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए. और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल होने चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. बस कुछ ज्यादा नहीं, बस एक नंबर जो आपको बताया जाता है ना, नंबर्स के ऊपर आपने बस रब्ता करना होता है. नंबर्स के ऊपर जैसे ही आप रब्ता करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन का फेस वॉश हो अवेलेबल करा दिया जाता है. तो जो जो लोग रब्ता कर चुके हैं भाई, उनमें ये सहूलत हो चुकी है कि वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. तो अब आपकी भी बारी बनती है कि आप भी लगाइए और इस्तेमाल करने के बाद खूबसूरतियां हासिल कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि भाई साहब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाकई कितने कमाल के प्रोडक्ट्स हैं. इसी के साथ साथ आप सब लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है. जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ साथ मैंने जो आप लोगों से सवाल पूछा है वो भी दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि आज हमने आप लोगों से सवाल क्या पूछा है. तो सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि दुनिया का वो कौन सा मलिक है जिसका कोई ऑफिशियल कैपिटल ही नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा है. आप बताइए 888 और फेसबुक पर जल्दी से मुझे ज्वाइन करते जाइए. और इसके साथ साथ मैं आपको बताने लगी हूँ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भाई साहब बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा तो फिर आप परचेज कैसे करेंगे. क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप मार्केट जाते हैं तो आपका ऐसे दुकानदार थोड़ा सा ब्रेन वॉश कर देते हैं और वो आपको बताते हैं कि बाजी तवा ही वठी वनो, अदा तवा ही वठी वनो, ये भली थव है, हीअं थव हो हूअं थव. अगर तव्हां उन्हनि जे गालनि में अची वेंदा आहियो त बाबा ईअं न कयो, तव्हां उन्हनि जे गालनि में न अचो ऐं सिर्फ़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो ही परचेज कयो. छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे लाइ हिकिड़ो अहिड़ो प्रोडक्ट तयार थियो आहे जेको तव्हांजी स्किन जे लाइ मेडिकेटेड फार्मूलो आहे. यानी कि इहा टेंशन बि तव्हांखे न हूंदी त असांजी स्किन अगरि सेंसिटिव आहे त हुनजे मथां लॻाए सघूं था या नथा लॻाए सघूं. कई मरतबा त ईअं बि थींदो आहे जॾहिं तव्हांजी स्किन सेंसिटिव हूंदी आहे हुनजे मथां तव्हां अगरि कोई बि अहिड़ो तहिड़ो प्रोडक्ट लॻाए छॾींदा आहियो त तव्हांजी स्किन इलाही ख़राब थी वेंदी आहे. तव्हांजे चहिरे ते अगरि हिकु दफ़ा एकनी प्रॉब्लम अची वियो न त हुनजो वञणु मतिलबु हू पंहिंजे मर्ज़ी सां ई वेंदा आहिनि एकनी. अगरि तव्हां बि चाहियो था त हुन एकनी खे अञा वधीक जेको आहे असां छेड़ियूं न, बल्कि उन्हनि खे ख़तमु करण जो को सल्यूशन असांखे पको ऐं पुख़्तो मिली वञे त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था. छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम एकनी खे बि फाइट कंदी आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे चहिरे जे एकनीस खे ख़तमु करे छॾींदी. डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूलो आहे. यानी कि जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे रिज़ल्ट जेके मिलंदा उहे फेशियल वारा रिज़ल्ट मिलंदा. यानी कि तव्हांखे यकीन अची वेंदो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई कमाल जो प्रोडक्ट आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन आहे, अल्फा आर्बुटीना, कॉजिक एसिड आहे ऐं ग्लूटाथायोन बि शामिल आहे. ये सभु चीज़ूं मिली करे जनाब तव्हांजे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे तयारु कयो वियो आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो त तव्हांखे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ 2 रातिनि जे इस्तेमाल में भला रिज़ल्ट मिली वेंदा आहिनि. अगरि तव्हां बि सुठा रिज़ल्ट हासिल करणु चाहियो था त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु लाज़मी करे सघो था ऐं मर्द हज़रात ख़वातीन तव्हां सभी लॻाए सघो था. ऐं जनाब मज़ीद जी ॻाल्हि आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न तव्हांजे लाइ कोई बि साइड इफेक्ट नथी आणे. छो त हीउ मेडिकेटेड फार्मूलो आहे. स्किन सां रिलेटेड जेके डॉक्टर्स हूंदा न, बिल्कुलु उन्हनि मिली करे तव्हांजे लाइ ही फार्मूलो ठाहियो आहे. और ख़ूबसूरती को मज़ीद निखारण के लिए ऐसा वाला सीन भी हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता कि भाई जो हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो वाकई हमारी स्किन से रिलेटेड है या फिर नहीं. और हम ज़्यादातर ऐसा भी हो जाता है कि हमसे बड़ी लंबी चौड़ी स्किन केयर भी नहीं हो पाती है. अगर आप भी चाहते हैं कि भाई अपनी रोज़मर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन में आपने जो है कुछ अच्छी चीज़ का इजाफा करना है, कुछ ऐसा लगाना है जिसका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में इजाफा भी लाए और आपकी पैसों की भी थोड़ी सी बचत हो जाए और आप लोगों की खूबसूरती जो है वो भी मेंटेन होती रहे, तो आप अपनी रोज़मर्रा स्किन के रूटीन में शामिल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को. क्योंकि इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन केयर आपको मजीद खास बना देगा, आसान बना देगा. आपकी स्किन जो है वो साफ सुथरी हो जाएगी, अच्छी तरह से हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी शख्सियत में भी ताजगी का एतमाद पैदा हो जाएगा. तो अपनी रोज़मर्रा ब्यूटी केयर रूटीन को बनाए मजीद खूबसूरत और मजीद आसान, क्योंकि अब आप इस्तेमाल करने वाले डी स्किन ब्यूटी क्रीम. और डी स्किन फेस वॉश की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि साथ में अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर रहे हैं तो साथ में आपके लिए डी स्किन का फेस वॉश भी अब मौजूद है.
अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो डी स्किन का फेस वॉश भी लीजिएगा, क्योंकि जब आप फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि अब हमारी स्किन जो है वो मुकम्मल खूबसूरत हो चुकी है। क्योंकि जब हमारे पास कोई अच्छा साबुन नहीं होता, अच्छा फेस वॉश नहीं होता, तो हम ऐसा करते हैं कि हम बहुत सारी चीजें ट्राई करे होते हैं अपने चेहरे के ऊपर। तो जब आप बहुत सारी चीजें ट्राई करे होते ना तो उससे ये नुकसान आपके चेहरे पर आता है कि आपकी स्किन खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और खास करके जो लोग टीनेजर्स होते हैं उनको नए नए दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए भी परफेक्ट सा सोल्यूशन है कि आप डी स्किन का फेस वॉश लगाना स्टार्ट कीजिए। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये तो आप सारे लोग ही लगा सकते हैं, यानी कि अगर आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हसरात हैं, खवातीन हैं, आप सारे लोग, एज की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, तो आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई कीजिए, जिसके अंदर जो है ना हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है। और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम होता है ना, ये इतना कमाल का सीरम है कि आपकी स्किन के अंदर जैसे ही जाता है ना तो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हमेशा क्लीन भी बनाए रखता है, हाइड्रेट भी रखता है। तो अब आप लोगों को ऐसा है ना कि सर्दियां आ रही हैं तो अलग से कोई चीज ऐसी नहीं लगानी पड़ेगी जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती रहे, या फिर आपके चेहरे पर जो है ना आपको ऐसा नहीं फील होगा कि भाई हमारी स्किन ऐसी बेजान सी लग रही है, रूखी सूखी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम बीमार हैं। भाई आपने सिर्फ और सिर्फ डी स्किन का फेस वॉश लगाना है, फेस वॉश करना है और आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी, ऐसे आप गुलाबों की तरह महकते रहेंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि भाई इतना टाइम हो चुका है आपका जो है ना फेस वॉश आपने किया है, लेकिन फिर भी अभी तक आपकी स्किन इतनी फ्रेश कैसे लग रही है। और आप उन्हें बताइएगा कि ये जो हमारी स्किन इतनी फ्रेश और ग्लोइंग लग रही है तो ये डी स्किन के फेस वॉश की वजह से लग रही है। और रात के टाइम आप अपना फेस वॉश करेंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज लाजमी कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मर्द हज़रात ख़वातीन सभी लगा सकते हैं, तो लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए, क्योंकि खूबसूरती के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता। यहाँ पर आप हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, यहाँ पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता। और इन खां अलावा जेके भी तमाजी पसंद जा गाना हुंदा बिल्कुल हलाइंदासी बाबा आई तमा सनी प्रोग्राम जो हिस्सो आयो तो बिल्कुल तमा जा फीडबैक्स शामले प्रोग्राम कया वींदा ई डिठो वने त मा केतरा कमेंट्स पड़या होया। अच्छा हाँ, हिदायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद कहती है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मुस्कान। ये सॉन्ग है मंजूर सकिरानी का मोहब्बत कर आ गुना। अच्छा माँ बिल्कुल तमाम जो गानो हलाइंदस। अली नवाज सारकी हमें सुन रहे हैं, कहते हैं आपको और तारिक भाई को सलाम। अली नवाज जी वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आपको बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको दिल के तांके रायों से वेलकम हो गया। किशोर भाई कहते हैं गुड मॉर्निंग क्यूट अदा, गुड मॉर्निंग प्यारा प्यारा अदा हिनमल उथायो लगे तो ये ना चलो तुम्हारी निंड के गुम कयूं था आई तहां के भलो भलो गानो बुधरायो था। ये हमारे साथ है अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची, आपने टॉपिक का जवाब दे दिया। ओके वासु भाई कहते हैं अति जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू प्यारा भाई। मोहम्मद जमान आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम, आपको भी वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ है गदा हुसैन मल्हा, कहते हैं बाजी कैसी हो। मैं गदा हुसैन मल्हा विलेज आंदल खान मल्हा। बाजी कल कहा था ना मैंने दुकान वाला मोहम्मद बख्श मल्हा बाजी उसका स्टॉक खत्म हो गया है क्रीम का, आप तारिक भाई का नंबर बताओ वो भी सिंधी में। ओके जी तारिक भाई का आपको नंबर बता रही हूँ, आप नोट कीजिएगा ठीक है। ओके जी तारिक भाई का नंबर है 03 न सिंधी में बुधाईंदा से बुड़ी 312 पंजाह पंजवीह 907 बुड़ी 312 पंजाह पंजवीह 907 ये तारिक भाई जो नंबर आए तमा रातो करे सको था। तारिक भाई बिल्कुल तमाम जी कॉलिंग जी इंतजार में बैठो आए तमाम कॉल करे अनन की बुधाए सको था किथे किथे स्टॉक जी जरूरत आए किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम अवेलेबल कराइन चायो था त ता तारिक भाई की बुधायो अवेलेबल कराए छडींदा। अच्छा लियाकत अली गबोल हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम, अदी केड़ा हाल है तवाजा आ शहर नवाब वली मोहम्मद लियाकत अली गबोल गोट हाजी अमीर बख्श गबोल खां तवाजो प्रोग्राम बुधा पर भाजो मोहब्बत हुआ है ताके चौदा बली करी आया। किशोर भाई कहते अदा सवाल जो जवाब। ओके ऐसे तमाम भी सवाल जो जवाब दिन हुआ है ठीक आए ठीक आए। जैन अली हमें सुन रहे कहते सबसे ज्यादा नाराज लोग तब होते हैं जब आप इस्तेमाल होने से इनकार कर देते हैं ये चीज
जी जी वासु भाई आपके लिए शमन लगाते हैं और कहती अदी सिडो मेको तेरा प्रोग्राम वड़ा वणदाए पया कहता भी नहीं वणदाए प्रोग्राम कसम बस बस ये ज्यादा हो गया। अरे दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद वालेकुम अस्सलाम चंदा बिल्कुल ठीक ठाक है आप बताएं कैसी हैं स्वीटा। और जी चाचा खालिद आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम सिडो हाउ आर यू हो फाइन मॉम भी कहते आपका शो देख रहा हूँ लाइक भी कर दिया है शेयर वरी केयर कर दो चाचा शेयर भी करे इस और देख कैसी रहे है? हाँ सही सही न सोनी माई के सुनाऊं दो

हाँ भाई जानी ॾाढो वणेसि थो अॼुकल्ह जानी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाएसि पियो समुझंदा कयो ॻाल्हि खे पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। अच्छा महबूब अली मोरो से हमें सुन रहे हैं, कहते हैं सिस्टर आरजे अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर आपका प्रोग्राम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स वेरी वेरी वीआईपी है। सिस्टर एक जी जी भाउ मां इहो सिंगर सर्च कयां थी, मूंखे हिन जो कोई सुठो गानो मिलियो त तव्हांजे लाइ हलाए वठूंगा, ठीकु आहे। सो थैंक यू तव्हां सां सगेट मौजूदु आहियो और दोबारा तव्हां मैसेज कयो आहे कोन जे अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर आपका प्रोग्राम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स वेरी वेरी नाइस लॻे थो, तव्हां उहो वराई मैसेज लिखियो आहे। ओके, लेकिन हिन में तव्हां कूंज न लिखिया, ॿिए में तव्हां वरी कूंज लिखी करे एॾी महिनत आई ली मारे छॾींदा आहियो।

बाबा ही कमाल अथव डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए तव्हां बि सोणा सोणा सोणा थी वेंदा समझो था सोणा सोणा ऐं सोणा थी वेंदा दर्दी दिल कहती है कि ये तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है वही तो

अच्छा अब्दुल्ला महर कहती मीरपुर खास से, तुमने बोला था कि हमारा कोई नहीं, हमने तुम्हारा, हम भी तो तुम्हारा भाई हैं। मीरपुर खास आओ, हमारी दिल से दावत है, मैसेज। अच्छा हो, मेरा चन्ना का गाना सुनना चाहते। अच्छा भाई, ये ठीक बात है कि आप मेरे प्यारे भाई हैं, लेकिन वो क्या है कि मैं ज्यादा कहीं जाती नहीं, या चीज नोटिस करी हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा घूम दिया है। तो कभी मीरपुर खास चक्कर लगा तो आपको बता देंगे कि हाँ जी, हमने मीरपुर खास देख लिया, घूम लिया। और साइमा मीर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बहुत प्यारी ना, तमाम बेहतरीन अंदाज, मीठा आवाज, माय उस्ताद आरजे सिद्रो, सदा सलामत रही, टॉपिक ओके। अरे साइमा, आपको वेलकम कहते हैं प्यारू, और ये मौजूद है हवाई सिद्रा जी, जवाब ओके, वहाँ कोई सही। अटतर मोरी से राजा हमीर चंद है, किशोर कुमार है, हीरा भाई है, सुरेश और फोजिया का गाना सुनना चाहती, मेरे ख्याल में लगाने की कोशिश करेंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई भाई, बताएं तो। सजाद अली रुस्तमानिया में सुन रहे हैं मातली से, सजाद भाई कहते हैं कि पेरियों सजाद भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए तो आपको यकीनन बहुत से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता रहेगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यही अच्छी और खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों के लिए है, यानी कि आप इसे मर्द हजरात भी लगा सकते हैं, आप इसे खवातीन भी लगा सकते हैं। तो जितनी भी औरतें हमें सुन रही हैं, मर्द हजरात हमें सुन रहे हैं, लड़कियां हमें सुन रही हैं, लड़के हमें सुन रहे हैं, आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी परचेज कर सकते हैं। यस।

0: राजा किशोर भाई कहते कि तुम जो बस हले तो तू पंजे घर भी न वनी रुगो स्टूडियो में बैठी हुजे
1: एड़ी भी गाल ना है।
0: बेबे वैसे ना ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो गया, ये अस वाला मोमेंट हो गया। हाँ बस ठीक है, ठीक है। सामान वगैरह खड़ी है चाहती माँ इतनी रन आने स्टार्ट करना।

ॾाढो भलो गानो हुयो. उनखां अलावा चाचा खे थैंक यू सॉन्ग रिक्वेस्ट हाज़िर. तव्हांजो गानो हलायूं था चाचा, पर भलो भलो गानो फरमाइश कजो. और अबू हनीफ अलबलोची लिखते हैं कि कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता. अल्लाह जाई विदा. ऐसन कहते हैं सोना न मन मोणा थी वेंदा. हाँ तव्हां सही आयो.

भाई मत कहें ऐसा मत कहें आप बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम के ऊपर फोकस कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको बड़ा खूबसूरत बना रही है तो आप भी लगाइए और बेफिक्र होकर लगाइए क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको जो रिजल्ट देगी वो फेशियल वाले रिजल्ट होने वाले यानी कि अब आप जो खूबसूरत होंगे वो इस तरह खूबसूरत होंगे कि लोग आपसे पूछेंगे कि बताएं तो ये इतना महंगा फेशियल कराया आपने शायद आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है आपकी स्किन इतनी टाइट हो चुकी है रिंकल्स गायब हो चुके हैं फ्रेकल्स गायब हो चुके हैं क्रेकल्स गायब हो चुके हैं तो उन्हें बताइएगा कि जी हमने जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिल चुका है तो आप भी लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

वैसे चाचा कहते हैं कि मैं मीरपुर खास वालों का शुक्र गुजार हूँ, वो डी स्किन ब्यूरो क्रीम लगा रहे हैं, स्पेशली उम्मीद अली लाशारी। ओके जी जी, दर्द दिल भी लगा रही हैं, अब्दुल्ला भाई भी लगा रहे हैं, और ऐसे मीरपुर खास से जितने भी लोग लगा रहे हैं, जरा बताइए हथ मथे कयो असांखे खबर पर। और गदा हुसैन भाई कहते हैं सिदरा मोहम्मद बख्श मल्ला दुकान वाला बोल रहा है कि मेरे पास तो टच मोबाइल नहीं है, कैसे सिदरा को मैसेज करूं, लेकिन कोई बात नहीं, मोहम्मद बोल रहा है कि मुझे जरूर

इज आई एम अमीर कहते कि सिद्रो जी जी ऐसा ही है बिल्कुल. और कह रही आओ तो दोनों साथ में चले मीरपुर खास घूमने. चलो फिर तुम जाना तो मुझे साथ में लेकर जाना जो तुमके रस्तों ना है डिटेल कोई साथ में होना चाहिए.

बात है, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते जा रहे हैं, खूबसूरतियाँ हासिल करते जा रहे हैं, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जा रहे हैं और हसीन होते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ टाइम हुआ है जनाब, लेते हैं जरा न्यूज ब्रेक, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे, वापसी आप लोगों के पास आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, यही रहिएगा, मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: Brought to you by
5: Super White's Rice Collagen Beauty Cream.
6: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
7: इमरजेंसी है गवर्नर राज लागू करे छड़ियो वफाकी काबीना जी केपीए में इमरजेंसी लगाने जी मंजूरी खां पोए सदर आसिफ अली जरदारी समरे ते सही करे छड़ी ऐवान सदर जे पदराय मौजब केपीए में सरकारी अंदन ऐ कानून लागू कंदर इदारन ते दहशतगर्दन हमलन में वाद थी सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी ऐ ला कानून ते जो तदारक करण में मुकमल तौर ते नाकाम रही मौजूदा हालतन सबब केपी हुकूमत नथी हलाए सकजे आईन के आर्टिकल 232 ए 234 तहत सदर आसिफ अली जरदारी इमरजेंसी लगाने की समरियत सही कई

0: बीहर तबाही किनारे ते पहुंचाइण चाहे तो पाकिस्तान के नुकसान रसायण वाली हर कोशिश के नाकाम बणाईंदासी। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो वफाकी काबीना के इजलास के खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ है छाई घड़ी घड़ी पांजी रांद विरजाइण चाहन था। इस्लामाबाद ते बीहर चढ़ाई जो मनसूबो जोड़ियो वो है ये नींद कानून पांजो रस्तो अख्तियार कंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: अरे न खुश्क और बेरोनो की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेहमे आहिन चार अंजु खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चांदन जो खूबियो जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम आई ब्राइट उन सा करो विद फाइनली ब्यूटी
4: सीरम। अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही है हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरियंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है सुपर वाइट।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

3804309 ॿुड़ी 332 73 84 309 ओके जी हिकिड़ो इहो नंबर आहे ॿियो नंबर आहे 03-12-50-25-907 ॿुड़ी 312 50 25 907 ही नंबर आहे जेको तव्हां डायल करे सघो था यानी की ही ॿई नंबर तव्हां डायल कयो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ऐं सोणा सोणा थींदा रहो बाबा तव्हांजो बि हक़ आहे ख़ूबसूरती हासिल करण ऐं अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कंदा त तव्हां वाक़ई सोणा थी वेंदा ऐं तव्हांखे उहो रिज़ल्ट मिलंदो जेको तव्हां हमेशह हासिल करण चाहियो पिया ऐं तव्हांखे कोई बि उहो प्रोडक्ट न ॾेई सघियो आहे रिज़ल्ट जेको तव्हांजी ख़ूबसूरती डिज़र्व करे पई लेकिन हाणे तव्हां वटि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अची वई आहे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु लाज़मी करे ॾिसो ऐं असांखे फीडबैक लाज़मी शेयर कंदा कयो जंहिंसां खे बि ख़बर पए त असांजा सोणा सोणा लिसनर जेके आहिनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए करे वाह जा सोणा थी विया आहिनि ओके सो बिल्कुलु तव्हां सां कचहरियूं हलनि पियूं तव्हांजा प्यारा प्यारा फीडबैक असांखे मिलंदा वञनि पिया ऐं जेके माण्हू असांखे फेसबुक ते ॿुधनि पिया बाबा पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा कयो इन सां छा थींदो आहे त असांजी जेका पोस्ट आहे न उहो इलाही सारनि माण्हुनि ताईं पहुचंदी आहे ऐं इलाही सारे माण्हुनि खे असां ॿुधाए सघंदा आहियूं त बाबा तव्हांजे लाइ बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए सघो था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश तव्हां सभिनी जे लाइ आहे उन खां अलावा जेको आहे सो चाचा ठीक है मैं समझ गई सारी बातें और उनका अलावा हिदायतुल्लाह कहते हैं आज नेटवर्क मुझे भी लग रहा है नेटवर्क का थोड़ा सा मसला है और मोहम्मद जमाल लिखते हैं बुआ जी हम भी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम दुनिया के सामने निशावर कर रहे हैं हमारा भी कोई शुक्रिया करे बाबा मां तव्हांजो शुक्रियो अदा कयां थी मोहम्मद जमान भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहिनि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो पिया थैंक यू सो मच और गदा हुसैन भाई कहते हैं कि सिद्रा पाची मोहम्मद बख्श बोल रहा है कि कभी आओ ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम और खुशबू लगा के विलेज आंदल खान मला अच्छा भाई तव्हांखे ख़बर आहे मां मतिलबु एॾो कोन घुमंदी आहियां सलाह न कयो ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा रहो दर्दे दिलि कहती आहे की चलो अदी साइमा मीर और आप दोनों आ जाओ मैं लेने आ जाऊंगी चलें जी ये तो बढ़िया हो गया फिर वफ़ा शहज़ादो मक्सी हमें सुन रही है वालेकुम असलाम लाड़काना से वफ़ा शहज़ादो मक्सी कहते हैं शो ज़बरदस्त आए तव्हांजो थैंक यू प्यारा बाप और चाचा कहते हैं कि बस आपको घबराना नहीं है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का फेस वॉश लगाना है बिल्कुल ओ इया गाल कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी फेशियल नहीं कराया बट डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फेशियल की रिजल्ट आ जाएगी भाई फेशियल का इसके अंदर जो है ना वो तमाम चीज़ें फेशियल की ऐड की गई हैं ताकि अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारे गांव में अगर देखा जाए तो मैंने अगर देखा है ना कुछ गांव में ऐसा वाला सीन होता है कि जब शादियाँ हो रही होती है ना तो वो जो दुल्हनें होती ना बेचारी उनकी स्किन ऐसी खवातीन कुछ होती हैं जिनको ऐसे गांव में लोगों को पता नहीं चलता कि भाई ये जो आंटी या कोई भी ऐसी अगर औरत आकर उन्हें बताती है ना फलां ब्लीच लगा लें फलां फेशियल लगा लें और उनको तरीकेकार नहीं होता पता कि भाई कैसे लगाना होता है और वो ऐसे वो तमाम हार्श वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ना दुल्हन के चेहरे पर लगाकर दुल्हन की स्किन ही खराब कर देते हैं मैंने ये बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो कि अक्सर गाँव में हो रहे होते हैं क्योंकि गाँव में इन चीज़ों की एजुकेशन की ज़रूरत होती है उनको पता नहीं होता उनको जो भी चीज़ बताई जाती है बस वो उसके ऊपर यकीन के लिए तो वो बहुत मासूम होते हैं तो पहली बात इतनी ज्यादा मासूम मत बने अगर आपको कोई भी इंसान किसी भी चीज का मशवरा दे रहा है तो पहले जरा थोड़ा उसके बारे में सोचें अपना भी जरा जहन उसके ऊपर दौड़ाएं कि वाकई जो चीज हमें बताई जा रही है सही या नहीं और खास करके जो दुल्हनों के चेहरों पर आप एक्सपेरिमेंट कर रही होती है ये भी ब्लीच लगा लें फेशियल लगा लें ये चीज लगा लें तो इन चीजों से गुरेज किया करें उनकी स्किन जो है ना वो क्या पता सेंसिटिव हो और जब आप इतनी हार्श प्रोडक्ट उनके चेहरे पर लगा लेते हैं तो फिर मसला हो जाता है तो ऐसा किया करें सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी से पहले अपनी शादी के बाद और अपनी शादी के दिनों में आप डी स्किन फेस वॉश लगाएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं ये बहुत लाइट से प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर जो है ना फेशियल की क्वालिटीज एड की गई है और बहुत कमाल की इसके अंदर जो है ना वो चीजें रखी गई और साथ साथ ये मेडिकेटेड फार्मूला भी है तो आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी शादियां हो रही हैं आपके घर
घरों में शादियां हो रही हैं, किसी की भी शादी हो तो उसे ये इस तरह के मशवरे ना देंगे, फलां ब्लीच लगा लें और फलां फेशियल लगा लें, ये लगा लें, वो लगा लें, और उस बेचारी दुल्हन की स्किन ही खराब कर देते हैं। बेचारे दुल्हनों के साथ भी यही वाला सीन हो रहा होता है, तो इन चीजों से गुरेज करें, अच्छा वाला प्रोडक्ट लगाएं। हाँ, चार पैसा वधिक भरियो पर शइ सुठी वठंदा कयो, समझो था इन चीज जो भी ख्याल रखंदा कयो। चवंदा आहिनि न, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, हुआ गाल आ। पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी कीमत जी गाल कई वनी त सफा मुनासिब पैसन में आहे, एडो भी महंगो प्रोडक्ट नाहे जो तव्हां अफोर्ड ही न करे सघो। सफा परफेक्ट पैसन में तव्हांखे मिली रहियो आहे, सफा परफेक्ट प्रोडक्ट आहे, प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे। जेके भी असांखे गोठन वारा माण्हू ॿुधनि पिया, जिन माण्हुनि खे हिन चीज़ जी ख़बर नाहे पवंदी त बाबा असां कहिड़ो प्रोडक्ट पंहिंजे चहिरे ते लॻायूं, कहिड़ी क्रीम असांखे लॻाइण घुरिजे, त तव्हां अखियूं बोटे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए छॾियो। इहो बाबा मुंहिंजो चवणु आहे, तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदे त तव्हांखे ख़बर पवंदी वाक़ई तव्हां वटि सुठो प्रोडक्ट हाणे शामिल आहे, ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम मां फ़ाइदो वठी सघो था। ऐं चाहे तव्हां सिटीज़ मां आहियो या फिर, वैसे इहा बि चीज़ आहे त अॼुकल्ह पार्लर्स में इहो घणो ट्रेंड अची वियो आहे। मुंहिंजो बि टे चार कुझु सहेलियूं आहिनि जेके पार्लर्स में बाबा पंहिंजे कस्टमर्स खे हाणे चवनि पियूं त ॿिया प्रोडक्ट तव्हां खोड़ ट्राए करे ॾिठा, पर जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे ॾिसंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी त वाक़ई बाबा शइ ॾाढी कमाल जी आहे। सो हाणे त पार्लर्स में बि इहो ट्रेंड अची वियो आहे त माण्हुनि खे कस्टमर्स खे ॿुधायो वञे थो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश लॻाए पंहिंजी ख़ूबसूरती खे मेंटेन रखी सघो था, ख़ूबसूरती खे वधाए सघो था। सो ख़वातीन हुजनि या मर्द हज़रात हुजनि, तव्हां सभु डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कंदा रहो, ठीकु आहे। भैया आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम ने वाकई धूम मचा दी है, तो अब आपकी भी बारी बनती है। जिन लोगों ने नहीं लगाई आप ट्राई करके देखिए। भाई मैं ऑलरेडी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती हूँ, तभी तो इतनी प्यारी हूँ। और नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मटियारी खां तव्हां सां ज्वाइन कयो आहे, आज सॉन्ग चलाओ खुद गर्जी। अच्छा मां ॾिसां थी, बिल्कुल तव्हांजी पसंदि जो गानो हलाए वठूं था। और कहते लाजवाब शो, लाजवाब शो, थैंक यू वेरी मच नजर मोहम्मद भट्टी भा। हनीफ अलबलोची लिखते हैं कि ये जिद है हमारी कि तुम्हें छीन ले सबसे, और हम जमाने से तकाजा नहीं करते और रो लेते हैं गोशाए तन्हाई में अक्सर, हम शहर की गलियों में तमाशा नहीं करते।

भई पोइ तव्हांजे लाइ बि माण्हू ईअं चवंदा छा त माण्हू ॾिठमि अनमोल पहिरीं नज़र में दिलि ईअं सिलिप थी वई छो त एतिरो ख़ूबसूरत माण्हू जो साम्हूं अची वियो त वाकई बाबा दिलि त सिलिप थियणी हुई नी सम्झंदा कयो ॻाल्हि खे डीस्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो नज़र मोहम्मद भट्टी भाई लिखते हैं कि मटियारी वालों को सलाम देना ओके जी मटियारी वाले लोग हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम बोलिए जी अच्छा रमजान भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं रमजान भाई ठीक ठाक चाचा कहते हैं कि हाने सर्दी पई अचे लोशन भी तो ठहरायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट में असा लोशन बिल्कुल एड कंदासी पर वाइटेश में लोशन आए तो तुम वो वी सो समझो था यस हर चीज हर मसले जो हल मुख्य लगन सदरा वट मौजूद है पुछंदा कर हा भई मूंखे दावतूं मिलंदियूं रहंदियूं आहिनि पर इहा अलॻि ॻाल्हि आहे हिन महिल ताईं काॾे विया कोन आहियूं चलो इनशाला करी त वेंदासीं और हिन खां अलावा हिदायत ला कहती की गाना हलेगा या नहीं हलेगा हलेगा सबर करो तारिक भाई कहती अस्सलाम वालेकुम आयशा मेमन ठेड़ी सिटी से है डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कर रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इनको आयशा प्यारी को वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया आयशा आप हमारे साथ मौजूद हैं और कहती हैं अच्छा आयशा हमें सलाम बोल रही है वालेकुम अस्सलाम आयशा स्वीटी आपको वेलकम हो गया

भाई तव्हां जो बि छको लॻी वेंदो जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा. अच्छा बिलाल आ चुके हैं. वालेकुम अस्सलाम कहते मोहतरमा. दिस मां अॼु बि आयम. भलो कयव बाबा, भलो कयव. छा ख़ुशि आयो? वेड़ो बाबा पंहिंजी सीट वठी. अच्छा महबूब भा, तव्हांजे का फरमाइश कई आहे न, उहा मूंखे नात जी फरमाइश कई आहे. सो नात तव्हांखे ख़बर आहे प्रोग्राम जे स्टार्टिंग में लॻाईंदा आहियूं. मां कोशिशि कंदमि तव्हांजे लाइ नात जेका आहे न उहो सुभाणे वारे प्रोग्राम जे स्टार्टिंग में हलाए वठंदासीं. ठीकु आहे. सो थैंक यू तव्हांजो मोहबत वारो प्रोग्राम ॿुधो पिया. और दारावान से डॉक्टर वाहिद बख्श हमारे साथ है. और मोहम्मद अली जोगी. अच्छा डॉक्टर साहब, इस बारे में जरा मुझे थोड़ी नॉलेज नहीं है, तो आप जरा टी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा लीजिएगा. और ये हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम मदद मुस्कान जी. डी स्किन ब्यूटी क्रीम प्रोग्राम अच्छा है. ये दो कलाम है शमन मिराली का. चलें शमन का ये गाना तो मैंने पहले से लगा लिया आपके लिए. चलें एंजॉय कीजिए. और चाचा कहते हैं कि बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है. मां बिल्कुल तांजो गानो हलाईंदम. वेरो तां पानी सीट दे.

बिलाल कहते पक्का सा चकू लगी वेंदो हाँ बाबा ट्राई करी ॾिसो मोहम्मद समान कहते बुआ जी मुझी नानी भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लवर बन चुकी है और यूजर भी आहे माशाल्लाह सफा यंग पई नजर अचे मुझी नानी साहिबा वाह साईं वाह यो कमाल अथव ॾिसो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो नहीं भाई पंखा मैंने बंद कर दिया है पंखे की वजह से मेरी आवाज मुझे लगता है थोड़ी ऐसे डबलिंग आप लोगों को मिलती होगी तो इसीलिए देख लें आप लोगों के लिए मैं गर्मी में बैठी हुई हूँ पंखा भी बंद कर दिया जो छा खपे ज़ालमो तव्हांखे स्किन ब्यूटी क्रीम नथा वठो आई हाँ पोस्ट के लाइक शेयर भी कोन था करो आई ली तो बड़ा कंजूस मानो को

सियारे अचण जो त हाणे मूंखे लॻे थो को इम्कान कोन्हे को एतिरी गर्मी आहे तो पा छा ॿुधायां लाडकाना में तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है बाकी आप अपनी अपनी सिटीज का बताएं आपके यहाँ क्या सीन चल रहा है और बिलाल कहते हैं पक्का सा छकू लगी वेंदो हाओ बाबा किशोर भाई कहते हैं कि दावतूं तो मिलंदियूं रहंदियूं आहिनि पर जिते असां चाहियूं था उतां दावत जो आसरो आसरो छा उम्मीद भी न हूंदी आहे ओ इहा ॻाल्हि कई जहां हम जाना चाहते वहां से दावत मिल नहीं रही है तो इसीलिए बस चुप करे बैठा आयो न्यास मोहम्मद भट्टी भाई में सुन रहे हैं मटियारी से वेलकम कहते हैं और मोहम्मद सलमान कुंभर भाई कहते हैं बाजी हमारा भी कमेंट पढ़ लिया करें जी जी भाई आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं मेठा ऑफिशियल हमें सुन रहे हैं कहते हाय क्या गाना लगाया है मजो अच्छी है वरना बिल्कुल बिल्कुल भला तहां के गाना बुधराईंदा हूं हां जी पोइ दिल जो सौदो थी वेंदो पर हिते मूंखे लॻे थो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो सौदो करणु ज़रूरी आहे सो वञो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ज़रूर वठी अचो सही आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि आहे त तव्हां पंहिंजे पिणी प्यारनि खे गिफ्ट बि ॾेई सघो था ये ऑप्शन बि है भई तो आप गिफ्ट बि कीजिए अपनी पिणी प्यारो को और टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का सो बातों को ज़रा हम स्टॉप करते हैं और यूं जाकर यूं वापस आते हैं सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट लगाइए और हसीन हो जाइए

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है. तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम. यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

करता या कोई मेहनत करता हुआ, खास करके जो ओल्ड एज में लोग कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे आमने सामने से गुजर रहे होते हैं, तो उनकी थोड़ी सी ऐसी मदद जो है ना वो कर लिया करें, और मदद ऐसे किया करें कि अगले इंसान को शर्मिंदगी ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो मदद तो कर देते हैं लेकिन वो मदद उनकी जो होती ना जरा ऐसी होती है कि अगला इंसान जो जिसकी आप मदद कर रहे हैं वो शर्मिंदा ही हो जाता है। ऐसी मदद करने से जरा गुरेज करें, क्योंकि अक्सर जो आपकी मदद होती है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि भाई शायद मुझे लगता है कि आपको भी पता ना चले, बस आप किसी की मदद कर दिया गए। और साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद ही और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो जरूर हमारे साथ शेयर किया करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है।

कसम। ओके जी हबीबुल थेबू के दिन आ जाए सिद्रा मुस्कान सॉन्ग बुधरायो। ओके अब्दुल्ला महर कहते हैं मीरपुर खास से वेलकम सिस्टर साइमा मीर सिस्टर दिलरुबा दर्दी दिल को एंड चाचा को भी। ओके जी ओके महबूब अली मोरो सिटी से सुन रहे कहते हैं कि कुंज आपी जो आपको नाम लेते हैं सिडो बोलते हैं या सिद्रा बोलते हैं उनको कहें कि सिद्रा कुंज बोल भाई आप ही बोला करें सिद्रा कुंज बाकी तो जिनकी जो मर्जी होती है वो बोलेंगे ना बस ये आप ही बोला करें सही लगता है। और उनका अलावा जेको आ सो अदा कहते हैं कि अदा ही वडो मसलो ना है हा उहा ही गाल जरा मुझे जहन में अच्छी वही तमाम सही आए पांजी जगह ते पर एकड़ी या भी गाल आए तो ये असाजे स्टूडियो जेको आ ना डाडो गरम थिंदो आ इन में मतलब ही चीजों जेके ना वो हीट कढंदी आ है सो ने वजह से नॉर्मल अगर टेंपरेचर डठो वने तो वो इतरो गरम ना होदो पर असा स्टूडियो डाडो गरम होदो आ। ओके रमजान भाई वेलकम हो गया आपका पता चल गया पक्के पाकिस्तानी है और आपने गजल शेयर कर दी है लिखे लिखो था अच्छा सिंधी गजल आ शायद लिखो था अखिंजा इशारा तू न समझा ही वे सकारा तू न समझा सिकंदा आहिन सदाई तोलाए नेण उन्यारा तू न समझा बैठो भरियां थो अग्यां तुझे थधा शुकारा तू न समझा सडे कमकार अचान तोडे ही सब लामारा तू न समझा जो हीणा आहिन ही हाल असांजा तेरी प्यारा तू न समझा मर्जी हलाए तू भेण सिदरा पहिंजी मुंजा अर्ज खुदारा तू न समझा अखिन जा इशारा तू न समझा ही वेसकारा तू न समझा जी जी चाचा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा ले फिर आप कोई कौन सा भी कलर पहन रहे उसे मतलब आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत ही लगेगी तो खूबसूरतियाँ हो जाएंगी जब आपके चेहरे पर मुकम्मल तब आप कोई भी कलर पहन लीजिए आप अच्छे ही लगेंगे अच्छे मतलब गोरे चिट्टे प्यारे प्यारे दातला कहते हैं कि मगर इतना रखना ख्याल ओके ओके सबर करें थोड़ा सा बिलाल लिखते हैं कि चांद की चांदनी भी मानित पड़ जाए चांद की चांदनी भी मानित पड़ जाए जुल्फों को वो जब चेहरे से हटाए यूं तो सादगी में भी कमाल है मगर बन सवर कर तो वो कयामत ही ढाए आए हाय हाय

0: अच्छा शायरी लगे पे थोड़ी सोलड़ी हुई न जे करे का गलती को न थी
1: सुनिए झरनों की पुकारे हम सफर
0: हाँ इहो मज़े जी ॻाल्हि आहे त सर्दियुनि में वरी स्टूडियो घणो थधो न आहे हूंदो ॿाहिरि भले केतिरी बि सर्दी हुजे पर स्टूडियो मतिलबु ई मज़ो ईंदो आहे स्टूडियो में वेहण सां ॼण हीटर थो हले फ़ाइदा आहिनि बबल सिर्फ़ु सर्दी में जेका लॻे थो त हिन चकर सिर्फ़ु महीनो ईंदी जनवरी वारो बाक़ी त हिन महिल सर्दी जो को चांस ई कोन्हे को ऐं पर इहा बि ॻाल्हि आहे त कुझु माण्हू वरी सोचींदा आहिनि न त बाबा जेका डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे इहा सिर्फ़ु असां छा सर्दियुनि में लॻाए सघूं था वरी गर्मियुनि में तव्हां थोरो सोचींदा त बाबा क्रीमूं नथियूं लॻायूं वञनि असां खां या कुझु वरी प्रोडक्ट अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके गर्मियुनि में तव्हां लॻाईंदा त तव्हांजे चहिरे ते एकनी निकिरी ईंदा आहिनि पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम में अहिड़ो कोई बि सीन कोन्हे को डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां लॻाईंदा त चाहे सर्दी हुजे चाहे गर्मी हुजे तव्हां हर स्किन जे मथां लॻाए सघो था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर मौसम जे लाइ आहे हर स्किन जे लाइ आहे हर माण्हू जे लाइ आहे ऐं जना बि मेडिकेटेड फार्मूलो आहे त तव्हां ट्राए करे ॾिसो तव्हांखे यकीननि सुठी लॻंदी नन्ना बिलाल सिंधी वारी शायरी जेका आहे सिंधी मतिलबु शायरी जो इतिहास गवाए मूं कॾहिं बि सही कोन पढ़ी आहे हुन अधे जी सही पढ़ी वियसि सो इहा ॻाल्हि शायरी मतिलबु सवली हूंदी ईअं आहे बाक़ी हाणे मां सिंधी शायरी जेका सही पढ़ां ईअं थी नथो सघे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचिजे जी वठी अचे पंहिंजे हथ सां ई ॾे इहो सही आहे इहो सही आहे

हाँ बाबा, जीना सिर्फ मेरे लिए समझौता नहीं। मुनव्वर भाई कहते हैं, मुनव्वर अली मुगल मीरपुर खास से बहना सिदरा मुस्कान, सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, मुझे डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट की मदद कर दो। किसी को पता नहीं लगेगा वरना मैं, अरे भाई ऐसी क्या बात है, आप मेरे पास होते तो मैं आपको रोज डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट करती, पर बात यह है कि आप भी मीरपुर खास में रहते हैं। वहाँ मेरा आना जाना होता नहीं है, तो ये कैसे चलेगा बताएं मुझे। बस मुनव्वर भाई आप ऐसा कीजिए, फिलहाल तो पान वठो, ये समझो तो तवां की तवां जी अदी सिदरा गिफ्ट करे सडिया है, सही है। ये ऑप्शन भी है।

हा भई ससा पंहिंजे हथ सां धू ॾे, ॾाढो भलो गानो आहे। ॿुधी करे वी आई पी वाई बची वई। और आप जी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻा रहे नहीं बताया करे मुझे, शर्माईंदा न कयो हिन मामले में त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाई आहे, वरी तव्हां मूंखे ॿुधाए न सघंदा आहियो। बाबा तव्हां लॻायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम दिलि खोले ऐं तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा रहो त पाजी असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए वरिती आहे। ऐसन कहती असां वटि अची वियूं आहिनि सर्दियूं, ॻोठ में त सिटी में देरि आहे। हा सिटी में सही था चओ, थोरी देरि आहे। थोरी छा मतिलबु, इलाही देरि आहे। और अदो चए थो अहिड़ा गाना हलाईंदो अला ॾाढो बाक़ी गानो भलो आहे। दिलि चए थो तू बि सज़ा पंहिंजे हथ सां ॾे, छो किशोर भाउ सज़ा जे हक़दार तव्हां त न आहियो। मोहम्मद सलमान कुंभर भाई, बाजी जी अदा तव्हांजो कॉमेंट पढ़ियो त हुयो, हिकिड़ो कॉमेंट कयो था वरी चओ था बाजी कॉमेंट पढ़ो, उहो पढ़ी छॾियो ऐं हीउ बि पढ़ी छॾियो। हाणे तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो, सही आहे।

जी जी, इन्होंने शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है सिर्फ कॉपी गाने बनाने का. देखा जाए तो ऐसा वाला सीन है. और मोहम्मद सुभान कहते हैं नन्ना ताओ लिखो जे को चंद आयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वरती हूँ अच्छे जा भले केडी मांगी मिले डी स्किन क्रीम वरती हूँ अच्छे जा. हाँ ओ ये सबने कहे ये जो भाई चाचा था झंडो मरी वारन के भजाए छो अला एड़ो भजाए छो वरी वो बेचारा जाहिर ही कोने थे तो बा एड़ो भी केंजे पोया ना पोजो अगलो मानु भजी वने तो बा साई तो बा तांडी स्किन ब्यूटी क्रीम अठ जो सही आ चाचा आई तमा सब बैठो आई ही डाडो भलो गानो हलायो है इन गाने के भी एंजॉय करना सी

अच्छा मुन्नवर भाई कहते हैं कि बेना अल्लाह पाक आपको खुश रखे, नौदेड़ो में फरहान मेमल जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल नहीं है, मैं कल नौदेड़ो में आया था। अच्छा फरहान मेमल जनरल स्टोर ते भी असान डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल कराए वठूं था बाबा, नौदेड़ो में था अवेलेबल कराए वठनासी ही वेजो आ मुझे ख्याल में। हजार भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। हजार भाई मोहम्मद मीरन जखरानी भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक आयो मजे में। और हिदायतुल्ला कहते हैं मेरे सही बात है, किशोर भाई कहते गलती से मिस्टेक हो गया, किस चीज का, किस बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टेक भी वैसे जरूरी होता है जिंदगी के अंदर, पता चले कि कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, तो जरूरी होता है।

को आहे सुतान डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणंदा रहो ठीक आ इते टाइम थियो आहे तव्हां खां इजाज़त वठण जो मिलूं था 5 बजे ठीक आ पंहिंजो ओ हेॾो सॼो ख़्यालु रखंदा किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलाम सां सलाम हाफ़िज़ बाय लव यू ऑल एंड

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: शाम मुल्क दुश्मनी ते खामोश तमाशाई थी वेही रहंदासीं एक जथो इस्लामाबाद अची पाकिस्तान के बीहर तबाही के किनारे ते पहुंचाइण चाहे तो पाकिस्तान के नुकसान रसायण वारी हर कोशिश के नाकाम बणाईंदासीं वजीर आजम शहबाज शरीफ जो वफाकी काबीना के इजलास के खिताब वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो आहे त शाही घड़ी घड़ी पांजी रांद वरजाइण चाहिन था इस्लामाबाद ते बीहर चढ़ाई जो मनसूबो जोड़ियो वियो आहे ईअं न थींदो ऐं कानून पंहिंजो रस्तो अख़्तियार कंदो केपी हुकूमत दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ वफ़ाक सां सहकार करण में तयारु न आहे दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ हिकु लफ़्ज़ बि न पिया ॻाल्हाइनि केपीअ जो वॾो वज़ीर मुल्क में मुआशी बहितरी नथो चाहे

हथियारनि ऐं ऑपरेशन लाइ ज़रूरी सामान जी खोट आहे। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि ऐं सहूलतकारनि सां सूबाई हुकूमत जी नाकारा पॉलिसी ऐं दहशतगर्दनि लाइ नरमी दहशतगर्दीअ में वाज़ सबबु थी।

खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद ते खारजिन जे मुल्क में दाखिल थियण वारी कोशिश नाकाम। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस जी कार्रवाई में 12 खारजी मारजी विया। एक अलकार शहीद ISPR मूजिब पाक अफगान सरहद ते फायरिंग जी ॾेवठ में नायब सूबेदार हिदायत अमान शहीद थी वियो। खारजिन जे मदद करण लाइ अफगान तालिबान जे चौकियुनि तां फायरिंग बि कई वई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सऊदी राजधानी रियाज में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते हुसैन जे हमले जी मज़ामत मारिजी वियल 12 ॼणनि जे वारसनि सां ताज़ियत जो इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त शहरनि ऐं आम हंधनि ते निशानो बणाइण क़बूलण जोॻो न आहे। आलमी भञकड़ी कंदड़नि हमला बंदि कया वञनि।

0: अमरीकी सदर सेनेट लाइ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार मोहम्मद अल सैद खे जहादी करार ॾेई छॾियो। अमरीकी चयो आहे त मशीगन में कंहिं जहादीअ खे सेनेटर थियणु नथो चाहियां। असां ईरान जे एटमी हथियारनि ताईं पहुचण वारी कोशिश ख़तम करे छॾी आहे। बाइडन जे दौर जे भेट में हाणे पेट्रोल जूं क़ीमतूं इंतिहाई घटि आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
6: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
7: Super White!
8: खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम एलोवेरा ऐं एवोकाडो अव्हां जी सेंसिटिव स्किन खे अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ टिन ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स, एक्नी ऐं स्कार्स घटाए स्किन खे बणाए रेडियंट स्पार्कलिंग ऐं ॾिए शानदार मिरेकल ग्लो, कुदरती चमक ऐं निखार जो बहितरीन इंतखाब। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगाज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।
9: खुशखबरी, हाणे लाहौर ऐं कराचीअ जे अस्पतालुनि मां तरबियत याफ़्ता चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद नबन शाह बुखारी, MBBS FCPS सीनियर डॉक्टर ट्रामा सेंटर लाड़कणो, साबिक़ रजिस्ट्रार पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट सर्विसिस ऐं गंगा राम अस्पताल लाहौर लाड़काणे शहर में ख़िदमतूं सरंजाम ॾेई रहियो आहे। माहिरे अमराज नमूनिया TB ॿारनि ऐं वॾनि में दम, हर क़िस्म जो सहको, सिगरेट ऐं दूहे जे करे साह जी दायमी बीमारी, छातीअ में पाणी, गंद या हवा भरिजी वञण, सीने में सूर, फिफड़न जो सुकड़जी वञण, मोटापो ऐं निंड दौरान साह जो रुकजण, पुराणो नज़लो, जुकाम ऐं साह मुझण, पुराणी खंघि, बलगम में रतु अचण, निड़ीअ में बार बार रेजस लहण ऐं बार बार निछू अचण ऐं नकु बंदि थियण, फिफड़न जे कैंसर जी तशख़ीस ऐं फिफड़न ऐं साह जे तमाम बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर सैयद नबन शाह बुखारी। क्लिनिक टाइम रोज़ानो शाम जो 4:30 खां राति जो 8 ताईं, आचर सुबुह जो 10 खां मंझंदि 3 ताईं। एड्रेस मेहरान मेडिकल सेंटर, साम्हूं लेडीज़ जेल, लाड़काणो। राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 0330-353-0250 ऐं 0336-022-1943।
8: अच्छन वारन खां परेशान आयो? पेश आहे आर्च क्रीम हेयर कलर। पंहिंजे पसंदीदा रंग सां पंहिंजो अंदाज बणायो वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश। पार्टी हुजे, ऑफिस हुजे या के ख़ासि मौके जी तयारी, हर लम्हे पंहिंजो बहितरीन अंदाज ज़ाहिर करियो। आर्च क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख़्सियत में आणियो नओ रंग, नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी। अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती खे ॾियो नओ रंग। आर्च क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज में एतमाद।
10: साईं, कुछ खबर अथव?
11: छा थियो सोणी?
10: ॿिनि ॾींहनि खां सोलर वारी बैटरी ख़राब थी पई आहे। नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
11: सोणी, हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरी जी ज़रूरत ई कोन्हे। पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा।
10: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
11: न न सोणी, सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 गारंटी पिया ॾियनि बैटरीअ जी।
10: वाह वाह, पोइ साईं जल्दी करियो, हाणे ई वञो ऐं बैटरी ठाराए अचो।
11: सरगोदा बैटरी सर्विस।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सदीअ जो वॾो सच आहे। ॾात वॾी शइ न आहे, पर सच वॾी शइ आहे।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: आप सुन रहे थे GAFM.
5: कोई ढकी छुपी बात नहीं है. मैं और कोई बात नहीं करूंगा. आप में से चार पांच लोग प्लान कर लें, अभी उन डिस्ट्रिक्ट में चक्कर लगा लें. अगर अल्लाह ताला खैरियत से रखे, वो आपको वापस ले आए, मुश्किल है कि वापस आए. इस टाइम हालात वहां एक्चुअल में खराब हैं, जिसको ठीक करना है. बट वो लोग पूरा जुलूस निकाल के ले गए. एक बंदे को कुछ उन्होंने नहीं कहा. ये नॉर्मल चीज नहीं है. एक तरफ एक दिन पहले वहां आप छाते हो, अगले दिन वहां से इलाके से आप गुजर जाएं और कोई कुछ ना कहे, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज नहीं है. अब दहशतगर्दी के ऊपर हमारा सिर्फ एक चीज थी कि ये नहीं हो सकता कि हम लोग दहशतगर्दी के ऊपर अपने फौजी जवान या पुलिस वालों की रोज शहादतें करवाएं और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो उसकी ओनरशिप के लिए भी तैयार ना हो. ये बकायदा तौर पर हर दिन की बुनियाद पर हो रहा था. पुलिस के वसाइल के ऊपर उनके फिगर्स.
2: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: Brought to you by
4: Super White Oil Free Beauty Cream. Munfarid aur jadeed formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: Finally, ab thoda me time banta hai. Haan to aur kya, sara din function mein busy rahi hain hum. Ab skin ki care kare, kal barat pe bhi jana hai. Tum strawberry wali, wo bhi super white ki. Obviously, meri favorite hai kyunki isse hi mujhe Korean glass skin milti hai. Tum kaun si use karti ho?
7: Main super white ki rice cream use karti hu, jisme paya jane wala kojic acid skin ko healthy rakhta hai and glowing rakhta hai.
6: Mere face pe oil bahut hota hai, isliye fresh skin ke liye super white oil free cream.
7: Aur main use karti hu super white turmeric cream, jiske use se meri rangat rehti hai gori. And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
6: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
8: Super white.
9: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज.
10: ॾाढो सुठो
9: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़.

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: कोक स्टूडियो सीजन 14

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: कोक स्टूडियो सीजन 14।

Tonight. आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: Coke Studio, Season 14.

सिंध जो वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह वफ़द समेत चीन जे गादी वारे शहर बीजिंग पहुची वियो। चीन में पाकिस्तान जे सफ़ीर सैद अली असद गीलानी ऐं संदसि टीम बीजिंग पहुचण ते वॾे वज़ीर जो इस्तक़बाल कयो। तर्जुमान मूजिबि वॾो वज़ीर मुराद अली शाह वफ़द सां गॾु सूबे हुबेई वेंदो, जिते सरकारी मसरूफ़ियतुनि जी शुरूआति सुभाणे सुबुह खां थींदी। हैदराबाद में सिंध तरक्की पसंद पार्टीअ जी मेज़बानी हेठि सिंध मुंहिंजी अमां क़ौमी कॉन्फ्रेंस सिंध जे विरांगे ऐं इंतज़ामी यूनिटनि जी सख़्त लफ़्ज़नि में मुख़ालफ़त। कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे एसटीबी सरबराह डॉक्टर क़ादिर मक़्सी जो चवणो हो त सिंध खे विरिहाइण सां मुल्क में बोहरान ख़तम न थींदा। मोहसन नकवीअ खे ॿुधाइण चाहियां थो त अञा सिंध जा 7 करोड़ माण्हू जीअरा आहिनि, हाणे ॿिटी पॉलिसी न हलंदी। अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर चयो त मरसूं सिंध न ॾिसूं हिकु सियासी नारो न आहे, ही सिंध जे अवाम जे दिलि जो आवाज़ आहे। कुझु तासुब परस्तनि खां सवाइ बाक़ी कराचीअ जो अवाम सिंधनि खां नफ़रत नथो करे। कुझु चैनल्स कूड़ी मुहिम पिया हलाइनि। एनएफसी अवार्ड में सिंध खे बराबरि जो हिसो ॾिनो वञे। इमरान इस्माइल चयो त वफ़ाक खे अर्ज़ु आहे त नवनि इंतज़ामी यूनिट्स बदिरां अख़्तियार हेठें सतह ते मुंतक़िल कयो। पीपल्स पार्टीअ खे किरदारु अदा करणो पवंदो। सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ एसयूपी पारां लाड़काणे लाइ सेवण खां निकतल वैद ते सिंध मार्च खैरपुर नाथन शाह पहुची वियो। सैद ज़ैन शाह चयो त सूबनि या इंतज़ामी यूनिट्स जी ॻाल्हि करणु पाकिस्तान जूं पाड़ूं खोटणु बराबरि आहे। तारीख़ी वतन खे लीका लॻाइण सां ख़तमु नथो करे सघिजे। सिंध जे हर नंढे वॾे शहर वेंदासीं, मुल्क ऐं सिंध जे अवाम खे ॿुधाईंदासीं त आइन जे बुनियादी ढांचे खे छेड़णु बदिरां मौजूदा जाली हुकूमत खे ई ख़तमु कयो वञे। इस्लाम कोट में अवामी तहरीक जे सॾु ते थर समेत सिंध जे ॿरंदड़ मसलनि ख़िलाफ़ रैली। अवामी तहरीक जे 7 कारकुननि प्रेस क्लब खां रैली कढी शहर जो गश्त कयो। अॻवाननि जो चवणु हो त थर खे ॾुकार सेटल इलाइक़ो करार ॾेई मारवाड़नि खे रिलीफ ॾिनो वञे। सिंध में इम्कानी यूनिट क़बूल न आहिनि। सिंधी 5000 साल पुराणे तहज़ीब जा वारिस आहिनि। सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। वसीलनि जी फुलट बंदि कई वञे। डिप्लो में थरवासी महांगाई ख़िलाफ़ रोडनि ते निकिरी आया। अटे समेत आम वाइपे जी शयुनि जे अघर में घाटे टोड़ इज़ाफ़े ख़िलाफ़ शहरनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो। शहरनि चयो त थर हिन वक़्तु ॾुकार जी संगीन हालतुनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। मथां वरी महांगाई मारवाड़नि जो जीअण अज़ाब करे छॾियो आहे। हुकूमत महांगाईअ ते ज़ाब्तो आणे।

0: सकरन में नौजवान मुबैना तौर 500 के गोलियों हणी कत्ल करण बाद आपघात करे छड़ियो। मैरापुर रोड से जवाबदार।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: और उसका इंतजार कर रही हूँ।
1: थैंक गॉड शी इज हियर। सिस्टर मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। ओके जान आई एम ऑफ नाउ एंड आई विल सेंड यू सम फूड। सिस्टर इनका ख्याल रखिएगा। हाँ आई एम जस्ट कमिंग।
2: आपकी ड्रिप चेंज होने वाली है, मेडिसिन लिए आपने?
3: जी कल रात से बड़ी बेचैनी हो रही है। I can't seem to sleep. मुझे लगता है दवाइयों का साइड इफेक्ट है।
2: कभी कभी बिला वजह बेचैनी हो जाती है।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में A product by Aksa Cosmetics Pakistan
2: Finally अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
4: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
5: Super White!
6: हर चप्पा हर गोशा
7: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
6: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: ऐ बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ऐ डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेहे में आहिन चावरन जो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे ऐ चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कन ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन संगरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: हर हुआ ट्रांसपोर्ट जी का हल्ले थी उते तहां जाए गीत धालन तहां के केदो फील थे तो मुझे हर जगह दे मुझे गीत बसन में मुझे इन सही
3: बसन में टिकटॉक ते बिल्कुल ट्रेंडिंग में धालन
2: लाई आर्टिस्ट रे तहां जा गाना मना ये समझो गाए करे हुए स्टार थी
4: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उन में खुश रखे छे तो उए जदे जैसे बो को आर्टिस्ट मुझा गीत गाइंदा तो मुझे खुशी थी अल्लाह पाक असा नौजवान ये सुठी गाल मुझे गीतन के जैसे पा वरी बीहर गाइंदा तो इलाही सुठो लगंदो आ मुझे बुरो न लगंदो आ खुशी थी आए तो मुझे इन लायक समझो तो मुझे गीतन के हर जगह से घड़ी घड़ी उन्हें रिपीट कर गायन पाया तो यहाँ खुशी जड़ी गाल मुझे
2: प्राउड की बाकी गाल है।

0: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
1: GFM 90.8।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A project by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: आप सुन रहे

0: गए फिल्म्स टूटी फूटी इंग्लिश एक करे कमेंट बातें तेरी दिल के ना देती मेरे गैन न करूँ तुझे ब्लॉक न करूँ तुझे बैन तू ना मेरा हेटर तू तो मेरा फैन
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: भाउ बियो त खैरा एडियु दाहु तो करी छा गाला
1: अड़े दारत मारे छड्यो मुझे यार के
0: भाउ बुधाय त सही किए तुझे यार के मारियो
1: मिलण

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है.
3: सुनते रहो GFM 90.8.
4: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में. सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर.
5: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया जी एफ एम नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान बेण.

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सघंदा सिंध ऐं कराची वरस्तिन जे लॉ कॉलेजेस लाइ ब बोर्ड कायम नोटिफिकेशन जारी सिंध में मेरिट जी बहाली ऐं मुबैना मेरिट जी लताड़ खिलाफ़ सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जो लॉन्ग मार्च कराची तरफ़ रवानदव विख विख ते इस्तक़बाल गुलन जी वरखा सखर में ज़्यादती बाद औरत ते तशद्दुद केस दाखिल बजवाबदार गिरफ़्तार एंटी करप्शन खाते जे अख्तियारन तालीम खाते जी सिफारिश ते स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबत शिकायतुन ऐं जांच जे लाइ तरीक़ेकार जोड़े छॾियो हेडमास्टरन खे सिधी रीति तलब करण खां रोकियो वियो सिंध जा 1133 नवां ऐं अपग्रेड सरकारी स्कूल एनजीओस खे ॾियण जो फ़ैसिलो सरकार अकेले सिर तालीम जे शोबे जो समूह

एंटी करप्शन खाते जे इख़्तियारनि तालीम खाते जी सिफ़ारिश ते स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि ऐं जांच जे लाइ तरीक़ेकार जोड़े छॾियो। नए तरीक़ेकार तहत एंटी करप्शन जी जांच टीमुनि खे शुरूआती मरहले में स्कूलनि जे सरबराहनि हेडमास्टरनि खे सिधी रीति तलब करण खां रोकियो वियो आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि ऐं जांच जे लाइ मुख़्तलिफ़ सरकारी स्कूलनि जे हेडमास्टरनि खे एंटी करप्शन खाते पारां हिरासा करण वारनि शिकायतुनि खां पोइ तालीम खाते जे सिफ़ारिश ते एंटी करप्शन इख़्तियारनि स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति ईंदड़ शिकायतुनि जी जांच जे हवाले सां नओं तरीक़ेकार जोड़ियो आहे। एंटी करप्शन खाते पारां जारी कयल सर्कुलर मूजिबि शुरूआती मरहले में स्कूल सरबराहनि खे सिधो सऊं तलब करण खां रोकियो वियो आहे, जॾहिं त स्कूल स्पेसिफिक बजट में हेराफेरी, बेज़ाबतगिन ऐं सरकारी फंडनि जे ग़लति इस्तेमाल बाबति शिकायतूं ज़िले सतह जे सर्कल आफ़िसरनि या ज़ोनल जे डिप्टी सेक्टरनि ऐं डायरेक्टरनि बजाए डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ज़रिए लाॻापियल स्कूलनि ॾांहुं उमाणियूं वेंदियूं। नए हिदायत मूजिबि त शुरूआती मरहले में फील्ड आफ़िसूं स्कूलनि में सिधी रीति जांच करणु, नोटिस जारी करणु, ज़ाती हाज़िरीअ लाइ तलब करणु या रिकॉर्ड घुराइण जी मजाज़ न हूंदियूं, जॾहिं त स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति वधीक कार्रवाई डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सिंध जे हिदायत मूजिबि कई वेंदी। अहिड़ी तरह स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि में स्कूल जो नालो, इल्ज़ाम जा तफ़सील, लाॻापियल माली साल, रक़म ऐं मौजूदा दस्तावेज़ी सबूत शामिल करणु लाज़मी करार ॾिनो वियो आहे। उन हवाले सां एंटी करप्शन अख़्तियारनि जो चवणु आहे त नए तरीक़ेकार जो मक़सदु स्कूलनि जो इंतिज़ामी मामलनि ऐं जाइज़ ख़र्चनि खे मुतासिर करण खां सवाइ स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि जी गॾियल ऐं असराइती जांच पड़ताल खे यकीनी बणाइणो आहे। सिंध हुकूमत सिंध ऐं कराची यूनिवर्सिटियुनि सां लाॻापियल लॉ कॉलेज लाइ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क़ाइमु कया आहिनि। उन हवाले सां कानून खाते जे अख़्तियारनि पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि कराची यूनिवर्सिटीअ सां लाॻापियल लॉ कॉलेज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड शाह नवाज़ तारिक़ खे मुक़ररु कयो वियो आहे, जॾहिं त इश्तियाक़ अहमद मेमण, अरुण परशाद, अरशद शर, इमरान मिठियाणी, हाकिम शेख ऐं फराज़ इम्तियाज़ शेख खे बोर्ड जा नॉन ऑफिशियल मेंबर मुक़ररु कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू सां लाॻापियल लॉ कॉलेज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो चेयरमैन बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक़ खे मुक़ररु कयो वियो, जॾहिं त इरफान बुगियो, हाशिम लिगारे, अल्ताफ़ जुणे जो, अली रज़ा चन्ना, वसीम शाह ऐं राजा जवाज़ साहड़ खे नॉन ऑफिशियल मेंबर मुक़ररु कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह मखदूम तालिबुल मौला लॉ कॉलेज हाला जे प्रिंसिपल मखदूम मोहम्मद ज़मा खे सिंध यूनिवर्सिटीअ जे क़ाइमु थियल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जे सेक्रेटरी मुक़ररु कयो वियो आहे। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि मेंबरनि ऐं चेयरमैननि जी मुक़ररीअ वारो मुदो 3 साल हूंदो। सिंध में मेरिट जी बहाली ऐं मुबैना मेरिट जे लताड़ ख़िलाफ़ सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जो लॉन्ग मार्च कराचीअ तरफ़ रवानो हुआ। हैदराबाद खां कराचीअ ॾांहुं निकितल पैदल लॉन्ग मार्च काफ़िलो बुलड़ी शाह करीम पहुची वियो। हज़रत शाह अब्दुल करीम बुलड़ीअ जे मज़ार ते हाज़िरी भरे दुआऊं घुरियूं वयूं। काफ़िलो बुलड़ी शाह करीम पहुतो त सियासी, समाजी ऐं कोपरस धुरनि तरफ़ां काफ़िले जी शानदार आजियां कंदे गुलनि जी वर्खा कई वई। उन मौक़े ते लॉन्ग मार्च जो शामिल अॻवाणनि ऐं शिरकत कंदड़नि खे सिंधी सकावत जी अलामत अजरकूं, लोंगियूं ऐं गुलनि जा हार पराए भलीकार कयो वियो। काफ़िले जे अॻवाणनि चेयरमैन ज़बीउल्लाह मस्तोई, फ़ख्र ज़मा, हुसैन बख्श चांडियो, सिकील दो चांडियो ऐं ॿियनि चयो त सिंध में मेरिट जी बहालीअ जे लाइ शागिर्दनि जो पुरमन एहतजाज जारी आहे, पर संदनि ख़दशनि ऐं मुतालबनि ते लाॻापियल इख़्तियारनि तरफ़ां घुरिबल ध्यानु न पियो ॾिनो वञे। हुननि इल्ज़ाम हयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुबैना करप्शन ऐं सिफ़ारिशी कल्चर सबबि मेरिट ते पूरो लंदड़ उमेदवारनि जो हक़ तलफ़ी थी रही आहे। हुननि मुतालबो कयो त मुक़ररीन ऐं मेरिट बाबति साम्हूं आयल शिकायतुनि जी शफ़ाफ़ जांच कराए हक़दार उमेदवारनि खे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। अॻवाणनि वधीक चयो त मेरिट जी बहालीअ जे लाइ शुरू कयल तहरीक खे हाणे प्यादल लॉन्ग मार्च जी सूरत ॾिनी वई आहे, जेको मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं ॻोठनि मां थींदो, कराची पहुचंदो। हिननि ऐलान कयो त 14 अक्टूबर ते कराची में वज़ीर आला हाउस आॾो पुरमन एहतजाज करे मेरिट जी बहालीअ जे लाइ पंहिंजा मुतालबा पेश कया वेंदा। हुननि ख़बरदार कयो त जेकॾहिं मुतालबनि ते ध्यानु न ॾिनो वियो त मेरिट जी बहालीअ लाइ अमली क़दम न खयां विया त एहतजाज जो दायरो वधीक वधायो वेंदो। सखर में औरत सां ज़्यादतीअ बाद कारे कारीअ जो इल्ज़ाम, तशदुद ऐं क़तल जी कोशिश, ॿ जवाबदार गिरफ़्तार। साइट एरिया थाणे जे हदि गुलशन इक़बाल में औरत सां मुबैना ज़्यादती करण बाद मथस कारे इल्ज़ाम लॻाए तशदुद ऐं क़तल करण जी कोशिश वारे वाक़िए जो SSP सखर अहमद चौधरी नोटिस वठंदे मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ फौरी क़ानूनी कार्रवाई जो हुकुम जारी कयो आहे। पधराईअ मुताबिक़ SSP जे हुकुमनि ते साइट एरिया थाणे जे SHO कार्रवाई कंदे वाक़िए में मुलविस ॿिनि जवाबदारनि ग़ुलाम शबीर चाचड़ ऐं अली मुराद चाचड़ खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। गिरफ़्तार जवाबदारनि खां जांच जारी आहे। ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ पिणु कार्रवाइयूं कयूं पियूं वञनि। वाकिए जो साइट एरिया थाणे ते केस दाख़िल करे वधीक क़ानूनी कार्रवाई शुरू कई वई आहे। मुतासिर औरत खे वधीक क़ानूनी कार्रवाई ऐं तहफ़ुज़ फ़राहम करण जे लाइ वूमेन

प्रोटेक्शन सेल मुंतकिल कयो वियो आहे जिथे ज़रूरी कानूनी कार्रवाई बाद खेस अदालत में पेश कयो वेंदो। सिंध हुकूमत सूबे के 1133 नवन अपग्रेड कयल सरकारी स्कूलन के इंतजाम तालीमी मयार में बेहतरी के लिए एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भाईवारी करण जो फैसलो करे वरतो आए। उन हवाले से तालीम वाले वजीर सरदार शाह के सदारत हेठ थियल इजलास में सरकारी स्कूलन के इंतजाम निजी शोबे की शमूलियत भाईवारी के तरीकेकार स्कूलन की कारकर्दगी तालीमी नतीजन जवाबदेही के निज़ाम समेत मुख्तलिफ़ मामलों से तफसीली गौर किया वो। इजलास के बुधा वो 1133 स्कूलन में 838 स्कूल सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 295 स्कूल सिलेक्ट प्रोग्राम जहाँ आलमी बैंक एशियाई तरक्याती बैंक के सहकार से तामीर थे उन्होंने स्कूलों में जदीद तालीमी सहूलतू फराहम कई हुई। उन् स्कूल सिंध के 19 जिलों में जदीद तालीमी कैंपस तौर कायम कया पा वन। इजलास में तालीम वाले वजीर सैयद सरदार शाह चयो त पब्लिक सेक्टर सरकार अकेले सिर तालीम के शोबे जो समूरो बार नथी खणी सके। मुआशरे तालीम के शोबे में महारत रखंदड़ इदारन की शमूलियत से निज़ाम के वधीक बेहतर बणाए सकजे थो। सिंध के वे वजीर ताज़ो थियल इजलास में अपग्रेड कल स्कूल शफाफ ए पायदार एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रेमवर्क के हतमी शिकिल दियण की हिदायत कई है। उन एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हर मुमकिन सहकार फराहम करे इम्कान जायजो वरतो वो तें हूंदे भी तालीम के मयार से का भी मसलहत कबूल न कई वेंदी। इजलास में बुधाया वो तो 1133 स्कूल की मरहलेवार हवालगी जो अमल डिसंबर 2026 का डिसंबर 2027 तक मुकमल किया वो। दस्तियाब सरकारी मनसूबाबंदी मूजिब 552 स्कूल डिसंबर 2026 वधिक 801 स्कूल मार्च 2027 बाकी स्कूल डिसंबर 2027 मुकमल करण जो हदफ मुकरर कयो वियो आहे। सिंध के रिथाबंदी वाले वजीर जाम खान शोरो चयो आहे त सिंध हुकूमत नेशनल एसडीजीज इन्वेस्टमेंट फेयर में 562 मिलियन डॉलर जा 7 सीड़पकारी मनसूबा पेश कया आहिनि जिन जो मकसद अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट बुनियादी सहूलतुन के शोबन में सीड़पकारी जा मौका पैदा करना है। सिंध में पानी फराहमी के चैलेंजन के मुंह दियण आबी वसीलन के बेहतर इंतजाम तरक्याती मनसूबन के निजी शोबे तरक्याती भाईवारन की सीड़पकारी वही अहमियत रखे थी। काल तकरीब के खिताब कदे मीडिया से गलायदे उन कराची के कींझर डंड में 100-150 किलोमीटर परे का पानी फराहम किया वो है जडे त सूबे जहा बया वा शहर सिंधु नदी के बिन्हीं पास आबाद आन। सिंध के पानी की जरूरतों जो वो इनसार सिंधु नदी से है। सिंधु नदी में पानी की खोट से सूबे में पानी की फराहमी जहा मसला वही वादा उन सिंध में ट्यूबवेल की तादाद 1 लख का घट है जडे त पंजाब में 14 लख ट्यूबवेल मौजूद हैं। उन सिंधु नदी में गदले पानी की आमद ए खोटड़ी बेरारे पानी में लूणियाट टीडीएस की वधंदड़ सतह से पिण गणती जो इजहार कदे है तो पानी के मयार ए फराहमी बाबत मसलन से असरायता कदम खड़ने की जरूरत है। उन पायदार तरक्की के मकसदन की हासिलत लाए सिर्फ सरकारी बजट से इनसार काफ़ी ना है। निजी सीड़पकारी तरक्याती फाइनानसिंग मौसमियाती फाइनानस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के असरायते नमूने कम में आणो पवंदो।

0: हिन वक्त जो सिंध राउंड अप बे आचर जे सिंध राउंड अप तई गुलाब खान भेण के दिन इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8
3: जियो सिंधी जियो
4: सिंधी। अरे न खुश आई बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज आई डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट ड्राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जे में आहिन चावरन जो खूबियों कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन्हें जिल्द नमी के ब्लॉक करे आई चामरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन्हें संगरोगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है.
3: सुनते रहो GFM 90.8.
4: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में. सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर.
5: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु, मां आहियां गुलाब खान भेण.

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सघंदा सिंध ऐं कराची वरस्टिन जे लॉ कॉलेजेस लाइ ब बोर्ड कायम नोटिफिकेशन जारी सिंध में मेरिट जी बहाली ऐं मुबैना मेरिट जी लताड़ खिलाफ़ सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जो लॉन्ग मार्च कराची तरफ़ रवानदा विख विख ते इस्तक़बाल गुलन जी वरखा सखर में ज़्यादती बाद औरत ते तशद्दुद केस दाखिल बजवाबदार गिरफ़्तार एंटी करप्शन खाते जे अख्तियारन तालीम खाते जी सिफारिश ते स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबत शिकायतुन ऐं जांच जे लाइ तरीक़ेकार जोड़े छॾियो हेडमास्टरन खे सीधी रीति तलब करण खां रोकियो वियो सिंध जा 1133 नवां ऐं अपग्रेड सरकारी स्कूल एनजीओस खे ॾियण जो फ़ैसिलो सरकार अकेले सिर तालीम जे शोबे जो समूरो भार नथो ई खणी सघे मुआशिरे ऐं तालीम जे शोबे में महारत रखंदड़ इदारनि जी शमूलियत सां निज़ाम खे वधीक बहितर बणाए सघिजे थो तालीम जो वज़ीर सरदार अली शाह कोटड़ी बैराज ते पाणी ज़हरीलो थियण जी तस्दीक पाणी खोट सां मसला वधनि था जाम खान शोरो स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो इम्तिहानी निज़ाम नौजवाननि जा ख़दशा ऐं हुकूमत

बजेट बाबति ईंदड़ शिकायतुनि जी जांच जे हवाले सां नओं तरीक़ेकार जोड़ियो आहे। एंटी करप्शन खाते पारां जारी कयल सर्कुलर मूजिबि शुरूआती मरहले में स्कूल सरबराहनि खे सिधो सऊं तलब करण खां रोकियो वियो आहे, जॾहिं त स्कूल स्पेसिफिक बजेट में हेरा फेरी, बेज़ाब्तगिन ऐं सरकारी फंडनि जे ग़लति इस्तेमाल बाबति शिकायतूं ज़िले सतह जे सर्कल आफ़िसरनि या ज़ोनल जे डिप्टी सेक्रेटरनि ऐं डायरेक्टरनि बजाए डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ज़रिए लाॻापियल स्कूलनि ॾांहुं उमाणियूं वेंदियूं। नए हिदायत मूजिब त शुरुआती मरहले में फील्ड आफिसू स्कूलन में सीधी रीत जांच करण, नोटिस जारी करण, जाती हाजिरी लाइ तलब करण या रिकॉर्ड घुराइण जी मजाज न हूंदियूं। जॾहिं त स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति वधीक कार्रवाई डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सिंध जे हिदायत मूजिब कई वेंदी। अहिड़ी तरह स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि में स्कूल जो नालो, इल्ज़ाम जा तफ़सील, लाॻापियल माली साल, रक़म ऐं मौजूदा दस्तावेज़ी सबूत शामिल करणु लाज़मी करार ॾिनो वियो आहे। उन हवाले सां एंटी करप्शन अख़्तियारनि जो चवणु आहे त नए तरीक़ेकार जो मक़सदु स्कूलनि जो इंतिज़ामी मामलनि ऐं जाइज़ ख़र्चनि खे मुतासिर करण खां सवाइ स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि जी गॾियल ऐं असराइती जांच पड़ताल खे यकीनी बणाइणो आहे। सिंध हुकूमत सिंध ऐं कराची यूनिवर्सिटियुनि सां लाॻापियल लॉ कॉलेज लाइ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क़ाइमु कया आहिनि। उन हवाले सां कानून खाते जे अख़्तियारनि पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि कराची यूनिवर्सिटीअ सां लाॻापियल लॉ कॉलेज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड शाह नवाज़ तारिक़ खे मुक़ररु कयो वियो आहे, जॾहिं त इश्तियाक अहमद मेमण, अरुण प्रशाद, अरशद शर, इमरान मिठियाणी, हाकिम शेख ऐं फराज़ इम्तियाज़ शेख खे बोर्ड जा नॉन ऑफिशियल मेंबर मुक़ररु कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू सां लाॻापियल लॉ कॉलेज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो चेयरमैन बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक़ खे मुक़ररु कयो वियो, जॾहिं त इरफान बुगियो, हाशिम लिगारी, अल्ताफ़ जुणेजो, अली रज़ा चन्ना, वसीम शाह ऐं राजा जवाज़ साहड़ खे नॉन ऑफिशियल मेंबर मुक़ररु कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह मखदूम तालिबुल मौला लॉ कॉलेज हाला जे प्रिंसिपल मखदूम मोहम्मद ज़मा खे सिंध यूनिवर्सिटीअ जे क़ाइमु थियल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जे सेक्रेटरी मुक़ररु कयो वियो आहे। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि मेंबरनि ऐं चेयरमैननि जी मुक़ररीअ वारो मुदो 3 साल हूंदो। सिंध में मेरिट जी बहाली ऐं मुबैना मेरिट जे लताड़ ख़िलाफ़ सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटीअ जो लॉन्ग मार्च कराचीअ तरफ़ रवां दवा। हैदराबाद खां कराचीअ ॾांहुं निकितल पैदल लॉन्ग मार्च काफ़िलो बुलड़ी शाह करीम पहुची वियो। हज़रत शाह अब्दुल करीम बुलड़ीअ जे मज़ार ते हाज़िरी भरे दुआऊं घुरियूं वयूं। काफ़िलो बुलड़ी शाह करीम पहुतो त सियासी, समाजी ऐं कोपरस्त धुरनि तरफ़ां काफ़िले जी शानदार आजियां कंदे गुलनि जी वर्खा कई वई। उन मौक़े ते लॉन्ग मार्च जो शामिल अॻवाणनि ऐं शिरकत कंदड़नि खे सिंधी सकावत जी अलामत अजरकूं, लोंगियूं ऐं गुलनि जा हार पराए भलीकार कयो वियो। काफ़िले जे अॻवाणनि चेयरमैन ज़बीउल्ला मस्तोई, फ़ख्रु ज़मा, हुसैन बख्श चांडियो, सिकील दो चांडियो ऐं ॿियनि चयो त सिंध में मेरिट जी बहालीअ जे लाइ शागिर्दनि जो पुरमन एहतजाज जारी आहे, पर संदनि ख़दशनि ऐं मुतालबनि ते लाॻापियल इख़्तियारनि तरफ़ां घुरिबल ध्यानु न पियो ॾिनो वञे। हुननि इल्ज़ाम हयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुबैना करप्शन ऐं सिफारिशी कल्चर सबबि मेरिट ते पूरो लंदड़ उमेदवारनि जो हक़ तलफ़ी थी रही आहे। हुननि मुतालबो कयो त मुक़ररीन ऐं मेरिट बाबति साम्हूं आयल शिकायतुनि जी शफ़ाफ़ जांच कराए हक़दार उमेदवारनि खे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। अॻवाणनि वधीक चयो त मेरिट जी बहालीअ जे लाइ शुरू कयल तरीक़े खे हाणे प्यादल लॉन्ग मार्च जी सूरत ॾिनी वई आहे, जेको मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं ॻोठनि मां थींदो, कराची पहुचंदो। हिननि ऐलान कयो त 14 अक्टूबर ते कराची में वज़ीर आला हाउस आॾो पुरमन एहतजाज करे मेरिट जी बहालीअ जे लाइ पंहिंजा मुतालबा पेश कया वेंदा। हुननि ख़बरदार कयो त जेकॾहिं मुतालबनि ते ध्यानु न ॾिनो वियो त मेरिट जी बहालीअ लाइ अमली क़दम न खया विया त एहतजाज जो दायरो वधीक वधायो वेंदो। सखर में औरत सां ज़्यादतीअ बाद कारे कारीअ जो इल्ज़ाम, तशद्दुद ऐं क़त्ल जी कोशिश, ॿ जवाबदार गिरफ़्तार। साइट एरिया थाणे जे हदि गुलशन इक़बाल में औरत सां मुबैना ज़्यादती करण बाद मथस कारे इल्ज़ाम लॻाए तशद्दुद ऐं क़त्ल करण जी कोशिश वारे वाक़िए जो SSP सखर अहमद चौधरी नोटिस वठंदे मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ फौरी कानूनी कार्रवाई जो हुकुम जारी कयो आहे। पधराईअ मुताबिक़ SSP जे हुकुमनि ते साइट एरिया थाणे जे SHO कार्रवाई कंदे वाक़िए में मुलविस ॿिनि जवाबदारनि ग़ुलाम शबीर चाचड़ ऐं अली मुराद चाचड़ खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। गिरफ़्तार जवाबदारनि खां जांच जारी आहे। ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ पिणु कार्रवायूं कयूं पियूं वञनि। वाक़िए जो साइट एरिया थाणे ते केस दाख़िल करे वधीक कानूनी कार्रवाई शुरू कई वई आहे। मुतासिर औरत खे वधीक कानूनी कार्रवाई ऐं तहफ़ुज़ फराहम करण जे लाइ वुमेन प्रोटेक्शन सेल मुंतक़िल कयो वियो आहे, जिथे ज़रूरी कानूनी कार्रवाईअ बाद खेस अदालत में पेश कयो वेंदो। सिंध हुकूमत सूबे जे 1133 नवनि ऐं अपग्रेड कयल सरकारी स्कूलनि जे इंतिज़ामनि ऐं तालीमी मयार में बहितरीअ जे लाइ एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गनाइज़ेशन सां भाईवारी करण जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। उन हवाले सां तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जे सदारत हेठि थियल इजलास में सरकारी स्कूलनि जे इंतिज़ामनि ऐं निजी शोबे जी शमूलियत भाईवारी जे तरीक़ेकार

स्कूलन जी कारकर्दगी तालीमी नतीजन ऐं जवाबदेही जे निज़ाम समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते तफ़सीली गौर कयो वियो। इजलास खे ॿुधायो वियो त 1133 स्कूलनि मां 838 स्कूल सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऐं 295 स्कूल सिलेक्ट प्रोग्राम जा आहिनि। आलमी बैंक ऐं एशियाई तरक़ियाती बैंक जे सहकार सां तामीर थियल उन्हनि स्कूलनि में जदीद तालीमी सहूलतूं फराहम कयूं वयूं आहिनि। उहे स्कूल सिंध जे 19 ज़िलनि में जदीद तालीमी कैंपस तौरु क़ाइमु कया पिया वञनि। इजलास में तालीम वारे वज़ीर सैयद सरदार शाह चयो त पब्लिक सेक्टर सरकार अकेले ज़रे तालीम जे शोबे जो समूरो भार नथी खणी सघे। मुआशिरे ऐं तालीम जे शोबे में महारत रखंदड़ इदारनि जी शमूलियत सां निज़ाम खे वधीक बहितर बणाए सघिजे थो। सिंध जे वॾे वज़ीर ताज़ो थियल इजलास में अपग्रेड कयल स्कूलनि लाइ शफ़ाफ़ ऐं पायदार एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गनाइज़ेशन्स फ्रेमवर्क खे हतमी शिकिल ॾियण जी हिदायत कई आहे। हुन चयो त एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गनाइज़ेशन्स खे हर मुमकिन सहकार फराहम करण जे इम्काननि जो जाइज़ो वरितो वेंदो, तंहिं हूंदे बि तालीम जे मयार ते का बि मसलहत क़बूल न कई वेंदी। इजलास में ॿुधायो वियो त 1133 स्कूलनि जी मरहलेवार हवालगीअ जो अमल December 2026 खां December 2027 ताईं मुकमल कयो वेंदो। दस्तियाब सरकारी मनसूबाबंदीअ मूजिबि 552 स्कूल December 2026, वधीक 801 स्कूल March 2027 ऐं बाक़ी स्कूल December 2027 ते मुकमल करण जो हदफ़ मुक़ररु कयो वियो आहे। सिंध जी रिथाबंदीअ वारे वज़ीर जाम खान शोरो चयो आहे त सिंध हुकूमत नेशनल SDGs इन्वेस्टमेंट फेयर में $562 million जा 7 सीड़पकारी मनसूबा पेश कया आहिनि, जिन जो मक़सदु अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट ऐं बुनियादी सहूलियतुनि जे शोबनि में सीड़पकारी जा मौक़ा पैदा करणु आहे। सिंध में पाणी फराहमीअ जे चैलेंजनि खे मुंहुं ॾियणु, आबी वसीलनि जे बहितर इंतिज़ाम ऐं तरक़ियाती मनसूबनि खे निजी शोबे ऐं तरक़ियाती भाईवारनि जी सीड़पकारी वॾी अहमियत रखे थी। काल्ह तक़रीब खे ख़िताब कंदे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे हुन चयो त कराचीअ खे कींझर ढंढ मां 100 खां 150 किलोमीटर परे खां पाणी फराहम कयो वेंदो आहे, जॾहिं त सूबे जा ॿिया वॾा शहर सिंधु नदीअ जे ॿिन्ही पासनि ते आबाद आहिनि। सिंध जे पाणीअ जे ज़रूरतुनि जो वॾो इनसार सिंधु नदीअ ते आहे। सिंधु नदीअ में पाणीअ जी खोट सां सूबे में पाणीअ जी फराहमीअ जा मसला वधी वेंदा आहिनि। हुन चयो त सिंध में ट्यूबवेल जी तादाद 1 लख खां घटि आहे, जॾहिं त पंजाब में 14 लख ट्यूबवेल मौजूदु आहिनि। हुन सिंधु नदीअ में गदिले पाणीअ जी आमद ऐं खोटड़ी बेरार ते पाणीअ में लूणियाट TDS जी वधंदड़ सतह ते पिण ॻणितीअ जो इज़हार कंदे चयो आहे त पाणी जे मयार ऐं फराहमीअ बाबति मसलनि ते असराइता क़दम खणण जी ज़रूरत आहे। हुन चयो त पायदार तरक़ीअ जे मक़सदनि जी हासिलात लाइ सिर्फ़ सरकारी बजट ते इन असार काफ़ी नाहे। निजी सीड़पकारी, तरक़ियाती फाइनांसिंग, मौसमियाती फाइनांस ऐं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खे असराइते नमूने कम में आणणो पवंदो।

0: पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध में सरकारी नौकरियों के लिए मेरिट ऐं इम्तिहानी निज़ाम की शफाफियत बाबत बहस एक भेरो बीहर सामू अची वो है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी अमल में मुबैना बेजाबतगिन ऐं मेरिट के हवाले से खदशन खिलाफ सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी हैदराबाद का कराची के वजीर आला हाउस तीन प्यादल मार्च शुरू किया है। शागिर्दन जो मुतालबो है तो संदन खदशन जो जायजो वी इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत के यकीनी बढ़ाया वे। बेतरफ मामलों के हल के लिए लागापियल सरकारी इदारन जो मौकुफ़ अमली कदम पिण अहम आन। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सरकारी मुलाजमतों लाए उम्मीदवारों की चूंड में अहम किरदार अदा करे थी। अड़े इदारे के इम्तिहानी अमल में शफाफियत ऐं मेरिट के यकीनी बनाने उम्मीदवारों के एतमाद लाए जरूरी है। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी तरफा इम्तिहानी सरिश्ते में मुबैना बेजाबतगिन करप्शन बाबत खदशन ऐं मेरिट की लताड़ खिलाफ हैदराबाद का कराची तीन पैदल मार्च शुरू किया वो है। मार्च में मुख्तलिफ सियासी ऐं समाजी अगवाणन साहबन अदबी शख्सियत पिण शिरकत कर शागिर्दन से यकदेजी जो इजहार किया है। एहतजाज कर नौजवानों जो मौकुफ है तो मुकाबले के इम्तिहानन में शफाफियत ऐं काबिलियत की बुनियाद चूंडन के यकीनी बनाया वे जी उम्मीदवार के बराबर मौक़ा मिली सकन। इम्तिहानी निज़ाम बाबत शिकायतों की मौजूदगी में अहम सवाल वो है तो उन्हें जाँच कड़े तरीके से कई वे हकीकतू कें सामू आंदी वन। एक तरफ शागिर्दन के पाँ खदशा पेश कर अजाले जो मुतालबो कर हक हासिल है तो वरी बे तरफ कें भी इदारे या फर्द बाबत लगल इल्ज़ाम की तस्दीक मुनासिब जाँच ए सबूतों के बुनियाद थियण जरूरी है। उन्हें कर मामले के हल के लिए आज़ाद गैरब जानबदार जाँच इम्तिहानी अमल के तरीक़ेकार बाबत वाजे मालूम ए शिकायतों के अदाले के लिए असरायतो निज़ाम अहमियत रखे तो जाँच दौरान कें भी किस्म जो बेजाबतगियों साबित थियन तो जिम्मेवार खिलाफ कानून ए लागापियल जबतन मूजिब कार्रवाई थियण घुर्जे। साॻी वक़्त जांच जा नतीजा वाज़े अंदाज़ में साम्हूं आयण सां उमेदवारनि जे ख़दशनि जो जवाब ॾियण में मदद मिली सघे थी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहानी निज़ाम बाबति उथारियल ख़दशनि जो हल इल्ज़ाम तराशी या हिकु ॿिए जे मौक़ुफ़ खे नज़रअंदाज़ करण बदिरां हक़ीक़तुनि जी तस्दीक शफ़ाफ़ जांच ऐं बाज़ाबता ॻाल्हियुनि में आहे। शागिर्दन के मुतालबे जो जायजो वठण लागापियल इदारन जो मौकफ़ सामू आयण ए जाँच के नतीजन मूजिब कानूनी कदम खण से ही मामलों के वाजे रुख दई सके तो हाँ अहम उ गाल है प्यादल मार्च दौरान उथारियल सवालन से कड़ी अगभराई थे थी ए लागापियल इख्तियार नौजवान के खदशन के वाजे इत्मिनान बख्श जवाब दियण में कामयाब थन था। इन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दींदा इजाजत अलह निगहबान।
1: जो शहर बहजो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
2: GFM 90.8
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है.
3: सुनते रहो GFM 90.8.
4: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में. सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर.
5: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया जीएफएम नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे माहा गुलाब खान बेण.

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सघंदा सिंध ऐं कराची वरस्टिन जे लॉ कॉलेजेस लाइ ब बोर्ड कायम नोटिफिकेशन जारी सिंध में मेरिट जी बहाली ऐं मुबैना मेरिट जी लताड़ खिलाफ़ सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जो लॉन्ग मार्च कराची तरफ़ रवानदा विख विख ते इस्तक़बाल गुलन जी वरखा सखर में ज़ियाती बाद औरत ते तशद्दुद केस दाखिल बजवाबदार गिरफ़्तार एंटी करप्शन खाते जे अख्तियारन तालीम खाते जी सिफारिश ते स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबत शिकायतुन ऐं जांच जे लाइ तरीक़ेकार जोड़े छॾियो हेडमास्टरन खे सीधी रीति तलब करण खां रोकियो वियो सिंध जा 1133 नवां ऐं अपग्रेड सरकारी स्कूल एनजीओस खे ॾियण जो फ़ैसिलो सरकार अकेले सिर तालीम जे शोबे जो समूरो भार नथो ई खणी सघे मुआशिरे ऐं तालीम जे शोबे में महारत रखंदड़ इदारनि जी शमूलियत सां निज़ाम खे वधीक बहितर बणाए सघिजे थो तालीम जो वज़ीर सरदार अली शाह कोटड़ी बैराज ते पाणी ज़हरीलो थियण जी तस्दीक पाणी खोट सां मसला वधनि था जाम खान शोरो स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो इम्तिहानी निज़ाम नौजवाननि जा ख़दशा ऐं हुकूमत जी ज़िमेवारी एंटी करप्शन खाते जे इख़्तियारनि तालीम खाते जी सिफ़ारिश ते स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि ऐं जांच जे लाइ तरीक़ेकार जोड़े छॾियो नए तरीक़ेकार तहत एंटी करप्शन जी जांच टीमुनि खे शुरूआती मरहले में स्कूलनि जे सरबराहनि हेडमास्टरनि खे सिधी रीति तलब करण खां रोकियो वियो आहे उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि ऐं जांच जे लाइ मुख़्तलिफ़ सरकारी स्कूलनि जे हेडमास्टरनि खे एंटी करप्शन खाते पारां हिरासा करण वारनि शिकायतुनि खां पोइ तालीम खाते जे सिफ़ारिश ते एंटी करप्शन इख़्तियारनि स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति ईंदड़ शिकायतुनि जी जांच जे हवाले सां नओं तरीक़ेकार जोड़ियो आहे एंटी करप्शन खाते पारां जारी कयल सर्कुलर मूजिबि शुरूआती मरहले में स्कूल सरबराहनि खे सिधो सओं तलब करण खां रोकियो वियो आहे जॾहिं त स्कूल स्पेसिफिक बजट में हेराफेरी बेज़ाबतगिन ऐं सरकारी फंडनि जे ग़लति इस्तेमाल बाबति शिकायतूं ज़िले सतह जे सर्कल आफ़िसरनि या ज़ोनल जे डिप्टी सेक्टरनि ऐं डायरेक्टरनि बजाए डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ज़रिए लाॻापियल स्कूलनि लाइ उमाणियूं वेंदियूं नए हिदायत मूजिबि त शुरूआती मरहले में फील्ड आफ़ीसूं स्कूलनि में सिधी रीति जांच करणु नोटिस जारी करणु ज़ाती हाज़िरीअ लाइ तलब करणु या रिकॉर्ड घुराइण जी मजाज़ न हूंदियूं जॾहिं त स्कूल स्पेसिफिक बजट

लॉ कॉलेज लाइ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क़ाइमु कया आहिनि। उन हवाले सां कानून खाते जे अख़्तियारनि पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब कराची यूनिवर्सिटीअ सां लाॻापियल लॉ कॉलेज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज़ तारिक़ खे मुक़ररु कयो वियो आहे, जॾहिं त इश्तियाक अहमद मेमण, अरुण प्रशाद, अरशद शर, इमरान मिठियाणी, हाकिम शेख ऐं फराज़ इम्तियाज़ शेख खे बोर्ड जा नॉन ऑफिशियल मेंबर मुक़ररु कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू सां लाॻापियल लॉ कॉलेज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो चेयरमैन बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक़ खे मुक़ररु कयो वियो, जॾहिं त इरफान बुगियो, हाशिम लिगारी, अल्ताफ़ जुणे जो, अली रज़ा चन्ना, वसीम शाह ऐं राजा जवाज़ साहड़ खे नॉन ऑफिशियल मेंबर मुक़ररु कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह मखदूम तालिब अलमोला लॉ कॉलेज हाला जे प्रिंसिपल मखदूम मोहम्मद ज़मा खे सिंध यूनिवर्सिटीअ जे क़ाइमु थियल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जे सेक्रेटरी मुक़ररु कयो वियो आहे। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि मेंबरनि ऐं चेयरमैन जी मुक़ररीअ वारो मुदो 3 साल हूंदो। सिंध में मेरिट जी बहाली ऐं मुबैना मेरिट जे लताड़ ख़िलाफ़ सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटीअ जो लॉन्ग मार्च कराचीअ तरफ़ रवां दवा। हैदराबाद खां कराचीअ ॾांहुं निकितल पैदल लॉन्ग मार्च काफ़िलो बुलड़ी शाह करीम पहुची वियो। हज़रत शाह अब्दुल करीम बुलड़ीअ जे मज़ार ते हाज़िरी भरे दुआऊं घुरियूं वयूं। काफ़िलो बुलड़ी शाह करीम पहुतो त सियासी, समाजी ऐं कोपरस्त धुरियुनि तरफ़ां काफ़िले जी शानदार आजियां कंदे गुलनि जी वर्खा कई वई। उन मौक़े ते लॉन्ग मार्च जो शामिल अॻवाणनि ऐं शिरकत कंदड़नि खे सिंधी सकावत जी अलामत अजरकूं, लोंगियूं ऐं गुलनि जा हार पाराए भलीकार कयो वियो। काफ़िले जे अॻवाणनि चेयरमैन ज़बीउल्लाह मस्तोई, फ़ख्र ज़मा, हुसैन बख्श चांडियो, सिकील दो चांडियो ऐं ॿियनि चयो त सिंध में मेरिट जी बहालीअ जे लाइ शागिर्दनि जो पुरमन एहतजाज जारी आहे, पर संदनि ख़दशनि ऐं मुतालबनि ते लाॻापियल इख़्तियारनि तरफ़ां घुरिबल ध्यानु न पियो ॾिनो वञे। हुननि इल्ज़ाम हयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुबैना करप्शन ऐं सिफारिशी कल्चर सबबि मेरिट ते पूरो लंदड़ उमेदवारनि जो हक़ तलफ़ी थी रही आहे। हुननि मुतालबो कयो त मुक़ररीन ऐं मेरिट बाबति साम्हूं आयल शिकायतुनि जी शफ़ाफ़ जाच कराए हक़दार उमेदवारनि खे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। अॻवाणनि वधीक चयो त मेरिट जी बहालीअ जे लाइ शुरू कयल खे हाणे प्यादल लॉन्ग मार्च जी सूरत ॾिनी वई आहे, जेको मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं ॻोठनि मां थींदो, कराची पहुचंदो। हिननि ऐलान कयो त 14 अक्टूबर ते कराची में वज़ीर आला हाउस आॾो पुरमन एहतजाज करे मेरिट जी बहालीअ जे लाइ पंहिंजा मुतालबा पेश कया वेंदा। हुननि ख़बरदार कयो त जेकॾहिं मुतालबनि ते ध्यानु न ॾिनो वियो त मेरिट जी बहालीअ लाइ अमली क़दम न खया विया त एहतजाज जो दायरो वधीक वधायो वेंदो। सखर में औरत सां ज़्यादे बाद कारे कारीअ जो इल्ज़ाम, तशद्दुद ऐं क़त्ल जी कोशिश, ॿ जवाबदार गिरफ़्तार। साइट एरिया थाणे जे हदि गुलशन इक़बाल में औरत सां मुबैना ज़्यादती करण बाद मथस कारे इल्ज़ाम लॻाए तशद्दुद ऐं क़त्ल करण जी कोशिश वारे वाक़िए जो SSP सखर अहमद चौधरी नोटिस वठंदे मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ फौरी कानूनी कार्रवाई जो हुकुम जारी कयो आहे। पधराई मुताबिक़ SSP जे हुकुमनि ते साइट एरिया थाणे जे SHO कार्रवाई कंदे वाक़िए में मुलविस ॿिनि जवाबदारनि ग़ुलाम शबीर चाचड़ ऐं अली मुराद चाचड़ खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। गिरफ़्तार जवाबदारनि खां जांच जारी आहे। ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ पिणु कार्रवायूं कयूं पियूं वञनि। वाक़िए जो साइट एरिया थाणे ते केस दाख़िल करे वधीक कानूनी कार्रवाई शुरू कई वई आहे। मुतासिर औरत खे वधीक कानूनी कार्रवाई ऐं तहफ़ुज़ फ़राहम करण जे लाइ वुमेन प्रोटेक्शन सेल मुंतक़िल कयो वियो आहे, जिथे ज़रूरी कानूनी कार्रवाईअ बाद खेस अदालत में पेश कयो वेंदो। सिंध हुकूमत सूबे जे 1133 नवनि ऐं अपग्रेड कयल सरकारी स्कूलनि जे इंतिज़ामनि ऐं तालीमी मयार में बहितरीअ जे लाइ एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गनाइज़ेशन सां भाईवारी करण जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। उन हवाले सां तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जे सदारत हेठि थियल इजलास में सरकारी स्कूलनि जे इंतिज़ामनि ऐं निजी शोबे जी शमूलियत, भाईवारी जे तरीक़ेकार, स्कूलनि जी कारकर्दगी, तालीमी नतीजनि ऐं जवाबदेही जे निज़ाम समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते तफ़सीली गौर कयो वियो। इजलास खे ॿुधायो वियो त 1133 स्कूलनि मां 838 स्कूल सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऐं 295 स्कूल सिलेक्ट प्रोग्राम जा आहिनि। आलमी बैंक ऐं एशियाई तरक़ियाती बैंक जे सहकार सां तामीर थियल उन्हनि स्कूलनि में जदीद तालीमी सहूलियतूं फराहम कयूं वयूं आहिनि। उहे स्कूल सिंध जे 19 ज़िलनि में जदीद तालीमी कैंपस तौरु क़ाइमु कया पिया वञनि। इजलास में तालीम वारे वज़ीर सैयद सरदार शाह चयो त पब्लिक सेक्टर सरकार अकेले सिर तालीम जे शोबे जो समूरो भार नथी खणी सघे। मुआशिरे ऐं तालीम जे शोबे में महारत रखंदड़ इदारनि जी शमूलियत सां निज़ाम खे वधीक बहितर बणाए सघिजे थो। सिंध जे वॾे वज़ीर ताज़ो थियल इजलास में अपग्रेड कयल स्कूलनि लाइ शफ़ाफ़ ऐं पायदार एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गनाइज़ेशन्स फ्रेमवर्क खे हतमी शिकिल ॾियण जी हिदायत कई आहे। हुन चयो त एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गनाइज़ेशन्स खे हर मुमकिन सहकार फराहम करण जे इम्काननि जो जाइज़ो वरितो वेंदो। तंहिं हूंदे बि तालीम जे मयार ते का बि मसलहत क़बूल न कई वेंदी। इजलास में ॿुधायो वियो त 1133 स्कूलनि जी मरहलेवार हवालगीअ जो अमल 2026 खां 2027 ते मुकमल कयो वेंदो।
دستیاب سرکاری منصوبہ بندی

जेको 552 स्कूल डिसंबर 2026 वधीक 801 स्कूल मार्च 2027 ऐं बाक़ी स्कूल डिसंबर 2027 ते मुकमल करण जो हदफ़ मुक़ररु कयो वियो आहे। सिंध जी रिथाबंदीअ वारे वज़ीर जाम खान शोरो चयो आहे त सिंध हुकूमत नेशनल SDGs इन्वेस्टमेंट फेयर में $562 million जा 7 सीड़पकारी मनसूबा पेश कया आहिनि, जिन जो मक़सदु अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट ऐं बुनियादी सहूलियतुनि जे शोबनि में सीड़पकारी जा मौक़ा पैदा करणु आहे। सिंध में पाणी फराहमीअ जे चैलेंजनि खे मुंहुं ॾियणु, आबी वसीलनि जे बहितर इंतज़ाम ऐं तरक़ियाती मनसूबनि खे निजी शोबे ऐं तरक़ियाती भाईवारनि जी सीड़पकारी वॾी अहमियत रखे थी। काल्ह तक़रीब खे ख़िताब कंदे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे हुन चयो त कराचीअ खे कींझर ढंढ मां 100 खां 150 किलोमीटर परे खां पाणी फराहम कयो वेंदो आहे, जॾहिं त सूबे जा ॿिया वॾा शहर सिंधु नदीअ जे ॿिन्ही पासनि ते आबाद आहिनि। सिंध जे पाणीअ जे ज़रूरतुनि जो वॾो इनसार सिंधु नदीअ ते आहे। सिंधु नदीअ में पाणीअ जी खोट सां सूबे में पाणीअ जी फराहमीअ जा मसला वधी वेंदा आहिनि। हुन चयो त सिंध में ट्यूबवेल जी तादाद 1 लख खां घटि आहे, जॾहिं त पंजाब में 14 लख ट्यूबवेल मौजूदु आहिनि। हुन सिंधु नदीअ में गदिले पाणीअ जी आमद ऐं खोटड़ी बेरार ते पाणीअ में लूणियाठ TDS जी वधंदड़ सतह ते पिण ॻणितीअ जो इज़हार कंदे चयो आहे त पाणी जे मयार ऐं फराहमीअ बाबति मसलनि ते असराइता क़दम खणण जी ज़रूरत आहे। हुन चयो त पायदार तरक़ीअ जे मक़सदनि जी हासिलात लाइ सिर्फ़ु सरकारी बजट ते इन असार काफ़ी नाहे। निजी सीड़पकारी, तरक़ियाती फाइनांसिंग, मौसमियाती फाइनांस ऐं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खे असराइते नमूने कम में आणणो पवंदो।

0: पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध में सरकारी नौकरियों के लिए मेरिट ऐं इम्तिहानी निज़ाम की शफाफियत बाबत बहस एक भेरो बीहर सामू अची वो है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी अमल में मुबैना बेजाबतगिन ऐं मेरिट के हवाले से खदशन खिलाफ सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी हैदराबाद का कराची के वजीर आला हाउस तीन प्यादल मार्च शुरू किया है। शागिर्दन जो मुतालबो है तो संदन खदशन जो जायजो वी इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत के यकीनी बढ़ाया वे। बे तरफ मामलों के हल के लिए लागापियल सरकारी इदारों को मौकुफ़ अमली कदम पिण अहम आन। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सरकारी मुलाजमतों लाए उम्मीदवारों की चूंड में अहम किरदार अदा करे थी। अड़े इदारे के इम्तिहानी अमल में शफाफियत ऐं मेरिट के यकीनी बनाने उम्मीदवारों के एतमाद लाए जरूरी है। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी तरफा इम्तिहानी सरिश्ते में मुबैना बेजाबतगिन करप्शन बाबत खदशन ऐं मेरिट की लताड़ खिलाफ हैदराबाद का कराची तीन पैदल मार्च शुरू किया वो है। मार्च में मुख्तलिफ सियासी ऐं समाजी अगवाणन साहबन अदबी शख्सियत पिण शिरकत कर शागिर्दन से यकदेरी जो इजहार किया है। एहतजाज कर नौजवानों को मौकुफ है तो मुकाबले के इम्तिहान में शफाफियत ऐं काबिलियत की बुनियाद चूंडन के यकीनी बनाया वे जी उम्मीदवार के बराबर मौकिया मिली सकन। इम्तिहानी निज़ाम बाबत शिकायतों की मौजूदगी में अहम सवाल वो है तो उनकी जांच कड़े तरीके से कई वे हकीकतू किए सामू आदि वन। एक तरफ शागिर्दन के पाँ खदशा पेश कर अजाले जो मुतालबो कर हक हासिल है तो वरी बे तरफ कें भी इदारे या फर्द बाबत लगल इल्ज़ाम की तस्दीक मुनासिब जांच ऐं सबूतों के बुनियाद थियण जरूरी है। उन्हें करे मामले के हल के लिए आज़ाद ऐं गैरब जानबदार जांच इम्तिहानी अमल के तरीकेकार बाबत वाजे मालूम ऐं शिकायतों के अदाले के लिए असरायतो निज़ाम अहमियत रखे तो जैसे जांच दौरान कें भी किस्म जो बेजाबतगियों साबित थियन तो जिम्मेवार खिलाफ कानून ऐं लागापियल जबतन मूजिब कार्रवाई थियण घुर्जे। साॻी वक़्त जांच जा नतीजा वाज़े अंदाज़ में साम्हूं आयण सां उमेदवारनि जे ख़दशनि जो जवाबु ॾियण में मदद मिली सघे थी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहानी निज़ाम बाबति उथारियल ख़दशनि जो हल इल्ज़ाम तराशी या हिकु ॿिए जे मौक़ुफ़ खे नज़रअंदाज़ करण बदिरां हक़ीक़तुनि जी तस्दीक शफ़ाफ़ जांच ऐं बाज़ाबता ॻाल्हियुनि में आहे। शागिर्दनि जे मुतालबनि जो जाइज़ो वठण लागापियल इदारनि जो मौक़ुफ़ साम्हूं आणण ऐं जांच जे नतीजनि मूजिबि कानूनी क़दम खणण सां ई मामलनि खे वाज़े रुख ॾेई सघिजे थो। हाणे अहम उहा ॻाल्हि आहे त प्यादल मार्च दौरान उथारियल सवालनि ते कहिड़ी अॻभराई थिए थी ऐं छा लागापियल इख़्तियारनि नौजवाननि जे ख़दशनि जे वाज़े ऐं इत्मिनान बख़्श जवाब ॾियण में कामयाब थियनि था। हिन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दींदा इजाजत अलह निगहबान।
1: जो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8।